आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भूर सुहानी। रिश्तों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई, अपनापन और विश्वास हर दौर में दिलों को जोड़ने का काम करता रहता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे रही हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की, वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब आपको जानकारी दे दे कि आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकेंगे। छह बजकर दस मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस गान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात।

8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। सुबह 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का। 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

शाम 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

तीसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

6:11 और ठीक 58 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुप्रभात यानी एक नई सुबह की नई शुरुआत, और वो शुरुआत शुभ

तब होती है जब हम किसी एक अच्छी बात से शुरुआत करते हैं, जैसे मदर टेरेसा की ये बात कि हम केवल महान कार्य नहीं बल्कि छोटे कार्य को भी महान प्रेम से कर सकते हैं। यानी नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। तो छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करना, इसे ही आध्यात्मिक परंपरा में सेवा माना गया है और कहा गया है सेवा परमो धर्मः। और यही बहुत सारे महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने सिखाया, अपने आचरण से सिखाया। और ये छोटे छोटे कार्य होते क्या है कि आप किसी एक व्यक्ति के दुख को अपना समझकर उसके लिए कुछ करें। देखने में सुनने में छोटा सा लगता है लेकिन उसके लिए सोचिए कितना बड़ा है। इसीलिए ये जो कार्य होते हैं जो हम सीखते हैं बहुत सारे उन लोगों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगा दिया, तो समझ में आता है कि जीवन हमारे अपने दायरे से बाहर भी है। हम जैसे समझते हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, सुबह से शाम तक सिर्फ अपने लिए काम करते रहें, उससे बाहर जो जिंदगी है वो ज्यादा खूबसूरत है। तो आज की शुरुआत कुछ ऐसी ही कि आज हम किसके लिए क्या नया कर सकते हैं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। सोचिए और साथ ही साथ ये भी सुनिए।

जी हाँ, तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो सेवा का भाव हमें बहुत संतुष्टि देता है, खुशी देता है, और तब जाके ये प्रभात जिसकी हम बात कर रहे थे कि सुप्रभात, शुभ प्रभात, तो वो प्रभात शुभ हो पाती है। क्योंकि देखिए, पूरे 24 घंटे तो सिर्फ अपने लिए ही हम निकालते हैं, लेकिन उसमें से कुछ समय किसी और के लिए निकालना, यही तो सेवा है। और इसे ही भगवद गीता के 3rd अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अनत्र लोक है अयम कर्म बंधन तत् अधर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संग है समाचर। के जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कर्म जो अपने लिए किया जाए वो बंधन बन जाता है, पर वही अगर परोपकार के लिए किया जाए या दूसरों के लिए किया जाए तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो अगर अपने जीवन से इसे जोड़ें तो अपने लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने अलावा किसी और के लिए निस्वार्थ होके हम क्या करते हैं, ये सोचने की बात है। और सेवा, सेवा भी तो एक ऐसा ही एहसास है, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी महीने में एक आधे बार समय निकालकर किसी अस्पताल में जाकर वहां पर जो लोग हैं उन्हें कुछ किताबें दे सकते हैं जो वो पढ़ें और उनका टाइम भी पास हो और उन्हें अच्छा भी लगे। किसी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कुछ चाहिए, बेशक वो स्टेशनरी हो या किताबें हो, तो वो आप जुटाकर दे सकते हैं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर एक दिन का समय देना, ये भी एक अच्छी सेवा है। या कि एक व्यक्ति जो बहुत उदास है उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह देना कि घबराओ मत, मैं हूं ना, तो ये भी एक सेवा ही है। बाकी तो अपने शरीर से अपने लिए जो कुछ करना है वो तो हमारा नित्य कर्म है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें अपनी जिंदगी से ऊपर उठाती हैं, जिंदगी के मर्म को समझाती हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

समय हो चला है 6:31 और ठीक 4 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है अर्पण। अर्पण जो सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत का हिस्सा है और याद दिलाता है कि सुप्रभात जब कहते हैं तो उस सुप्रभात का वास्तविक अर्थ क्या है या कैसे अपनी सुबह को शुभ बनाएं। और उसमें से एक भाव होता है सेवा का भाव, कि सुबह सुबह ही आप ये सोच लें कि आज किसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, क्या ऐसा करेंगे जो निस्वार्थ होगा, आपसे हटकर होगा, आप जो पूरा दिन अपनी जिंदगी में जी रहे हैं उससे अलग होगा। तो ऐसा ही कोई ना कोई जज्बा, सुबह सुबह जागे तो दिन अच्छा हो ही जाता है, जैसे सेवा का भाव। और सेवा से ना सिर्फ जो करने वाला है वो बदलता है, बल्कि जिसके लिए किया जाता है वो भी बदल जाता है। तो सेवा ही एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा एहसास है, ऐसा अनुभव है जो समाज में सामंजस्य बनाता है। उससे मन में करुणा आती है और तब हम वास्तविक खुशी या आनंद को समझ पाते हैं। सच कहें तो ये एक तपस्या भी है और एक साधना भी। एक ऐसा दीप है जो दूसरों को प्रकाशित करता है।

लेकिन स्वयं भी खुद भी वैसे ही प्रकाशित हो जाता है। तो सोचिए आज किसके जीवन को प्रकाशित करना है, किसके लिए क्या ऐसा करना है जो उसे उसकी दुविधाओं से बाहर निकाल सके। आप सोचिए और साथ साथ ये भी सुनिए।

बहुत ही सुंदर ये भजन। और एक सुंदर बात जो हम कर रहे थे कि सेवा का भाव क्यों जरूरी है और क्यों वो करके हमें इतनी खुशी मिलती है। जानते हैं, ऐसे तो बहुत सारी लोगों से हमने सुना है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो उसमें भी सेवा को बहुत अच्छा माना जाता है, प्रधान माना जाता है। क्योंकि सेवा करना सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, उन्हें किसी दुख से उबारना नहीं है, उन्हें कोई सहायता देना नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर के अहंकार को मिटाना भी है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी बदले की उम्मीद से किसी के लिए कुछ करते हैं तो सोचिए कि हम उस ऊपर वाले के बहुत करीब हो जाते हैं। हमारे अंदर से मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। और सच कहें तो आध्यात्मिक विकास की सबसे पहली शर्त यह है कि मैं और मेरा आपके मन से खत्म हो जाए, और सेवा वही माध्यम है। अगर भगवद गीता की बात करें तो सेवा हमें सिखाती है कि बिना फल की इच्छा के लिए भी काम किए जा सकते हैं। तो जो कर्म योग है वो भी समझ लीजिए सेवा से ही निकला है, या सेवा इसका एक उदाहरण है। इसीलिए जब हम पूरे मन से किसी के लिए कुछ करते हैं तो मन में बहुत सारी अच्छी चीजें आ जाती हैं, मन का शुद्धिकरण होता है, जैसे करुणा आ जाती है, प्रेम आ जाता है, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। और बस यही सब कुछ तो है जो हमें इंसान बनाता है।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र

7:10 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है गोल्ड सुप्रभात। अभी जब मैं आपको टाइम बता रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि देखिए बताते बताते 7:11 हो गए। 14 मई है आज, 2026 चल रहा है, और अगर सोचूं तो ये जो टाइम आपको बताया, ये टाइम तो अब लाइफ में कभी लौट कर आने वाला है नहीं। और तब ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ना, एक नदी की तरह है कि ये जो पानी बह गया वो लौटकर नहीं आएगा। पर फिर भी इतनी सारी फिलोसॉफिकल बातें जानकर, समझकर, सोचकर, सुनकर हम अपने आप को बदलते तो है ही नहीं। हम फिर भी यही सोचते हैं कि आज जो करना था उसे कल कर लेंगे, अरे अभी थोड़ा सा टाइम और है, देख लेंगे। और यही करते करते इतना सारा टाइम निकल जाता है और एहसास होता है कि अरे हम यहां पहुंच गए। जैसे जनवरी कब शुरू हुआ था 2026 का, और कब ये आज मई आ चुका है, मई भी आधा बीत चुका है, पता भी नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि समय भागता जा रहा है दोस्तों, और उस भागते समय को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम आलस छोड़ देना तो आराम से पकड़ में आ जाते हैं। बस यही सोचकर आज जो जो करना है ना, उसे आज ही में रखिए, कल पर मत टालिए। इसी सुंदर सी बात के साथ आपको बता दूं कि मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से, और साथ ही साथ इस प्यारे से गाने से।

जी हाँ, तो सुबह की शुरुआत तो हो गई है इतने प्यारे से गाने के साथ। और अब ये जो आप स्नूज कर करके और सोचते हैं ना कि थोड़ी देर और सो लें, इसे जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि सूर्य देवता तो आ ही गए थे, 5:31 के आसपास जाएंगे, 7:03 के आसपास, तो दिन काफी लंबा है अगर आप समय से उठ जाएं तो। लेकिन अगर सुबह सुबह आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम और कर लिया जाए तो ये दिन छोटा हो जाता है, और फिर बहुत सारे काम जिनकी हम बात कर रहे थे कि आज ही खत्म करने हैं वो कल पटल जाते हैं। बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसीलिए जब दिन में इतनी गर्मी हो जाती है और मन कुछ भी करने के लिए नहीं करता, ये बहुत जरूरी होता है कि सुबह आप जल्दी जल्दी उठ के और बहुत सारे काम निपटा लें या उनकी लिस्ट बना लें, सोचें, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होता है। और ऐसे में जब आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। बस आजमा के देखने की बात है, तो आज आजमा ही लीजिए।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि सुबह सुबह के समय को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए या पूरा दिन कैसे प्रोडक्टिव हो। लेकिन यकीन मानिए, ये सारी बातें किताबी रह जाती हैं अगर हम सुबह सुबह अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते या हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो लगता है कि ठीक है, सुनने में अच्छा है, लेकिन कैसे उठें, हिम्मत ही नहीं हो रही, एनर्जी ही नहीं है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी किया जाए। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो स्थिति है, ये तब आती है जब बहुत टाइम तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जरूरी यह है कि हर रोज 10 मिनट ही निकालें, लेकिन निकालें तो कुछ तो ऐसा करें जो आपके तन और मन को एक साथ संतुलित रखे, बैलेंस्ड रखे। अब उसमें आसन की जब हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है, पता भी नहीं चलता और आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। जैसे वज्रासन की बात करें तो वज्रासन जो है वो एक ऐसा आसन है जो हमारे पाचन में मदद करता है, घुटनों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है, यानी हमारा फोकस भी बढ़ाता है। तो उनके लिए ज्यादा ही लाभकारी है जो काम के दौरान लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे कि आप। तो करना कैसे, आपको घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाना है, हाथों को घुटनों पर रखना है और अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ है, उसको सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है। आप अगर 5 मिनट भी ऐसे बैठ जाएं तो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। बस शुरुआत करने की बात है, इस आलस को छोड़ने की बात है और ये समझने की बात है कि अपना ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है आपकी और उसके बाद ही सब कुछ आता है। इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए।

जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना आपको सुनाया है, लेकिन एक बात के लिए तो सॉरी बोलना पड़ेगा कि आपको योग के बारे में बताते बताते हेल्थ टिप तो बताना ही भूल गई थी। अब वो जरूरी है ताकि आप योग भी ढंग से कर सकें, और वो है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, उठते ही सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, उसमें थोड़े से नींबू की बूंदें हों तो और अच्छा है। और ऐसा करेंगे तो शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ता है और दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहती है। और हाँ, ये तो हुई आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में यानी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन मानसिक सेहत भी तो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मोबाइल से दूरी बनाए रखना जरूरी है। थोड़ी देर अपने आप को देना बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी थोड़ी देर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपने आप सोचिए कि आज क्या क्या करना है या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे खुशी देती हैं, जिनको करके मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसा सोचने से ही आपके दिमाग में अपने आप आएगा और आप उन चीजों का अवॉइड करने लगेंगे जो आपको परेशान करती हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ भी आपके अपने हाथ में है, पर ये भी हम जानते हुए भी कई बार सोचते नहीं है या इसके बारे में कुछ करते नहीं है। तो आज ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसके बारे में भी छोटा सा कुछ शुरुआत में किया जाए।

तो इसी प्यारे गाने के साथ पूनम आपसे इजाजत चाहती है। आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात और अब सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। पूरे आधे घंटे हम आपके साथ रहेंगे और देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज के संक में महानगरों की खबरें होंगी और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। लेकिन सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सुभद्रा को।
1: नमस्कार एंड हेलो फहद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस दिस मॉर्निंग। सो टाइम फॉर आज सवेरे, आवर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस एंड एंजॉय द प्रोग्राम। सो वी बिगिन फहद विद सम न्यूज।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एक्ट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन होगा और इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी।
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill.
0: और सुभद्रा, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन पाबंदियों के कारण किसानों, खासकर आलू उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से ये प्रतिबंध हटाने का वायदा किया था और इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निकाय भर्ती

0: सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से जुड़े मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार ने उन सभी लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने कई आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
1: The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade, DGFT, has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to the EU and USA under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme AAS, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West and Ministry of External Affairs CB George informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Energy security will dominate the agenda, with India looking to secure stable supplies amid rising geopolitical tensions in West Asia and continued pressure on global oil markets. We have more from our correspondent.
2: India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ADNOC Gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
3: We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
2: The linking of India's UPI payments platform with UAE's ERNI system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: और सुभद्रा, कल उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हुई बारिश से 43 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी के पास।
4: आंधी तूफान से हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और सुभद्रा, ये मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर की नमी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है।
1: Government has given 1 year extension to Director of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood, according to an official order issued by the Department of Personnel and Training. The Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन की शिखर वार्ता के लिए चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंच गए हैं। उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ईरान युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, व्यापार तनाव, ताइवान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वार्ता में अमरीका और चीन के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने, चीन द्वारा अमरीकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने और होर्मोज जल डमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर भी

0: चर्चा हो सकती है।
1: IPL क्रिकेट, विराट कोहली क्रिएटेड हिस्ट्री एंड ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 विकेट विक्ट्री ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स इन रायपुर लास्ट नाइट। कोहली स्कोर्ड एन अनबीटन 105 रन्स ऑफ 60 बॉल्स इंक्लूडिंग 11 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। इट वाज हिज 9th IPL सेंचुरी, द मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। ड्यूरिंग हिज इनिंग्स ही ऑल्सो कंप्लीटेड 14,000 T20 रन्स, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एंड द फास्टेस्ट प्लेयर एवर टू रीच द माइलस्टोन, ब्रेकिंग क्रिस गेल record. He also crossed 400 runs this IPL season. Royal Challengers Bengaluru defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur last night, and today Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m.
0: श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। सुभद्रा से जानेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
1: यस फरहत, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट विजय नारायण एंड इट्स एडवोकेट जनरल एज इट्स एडवोकेट जनरल। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन मद्रास हाई कोर्ट। ही इज द सक्सेसर ऑफ P.S. रामन, हु रिजाइंड ऑन ट्यूजडे। नारायण हैज सर्व्ड एज एडवोकेट जनरल ड्यूरिंग the AIADMK rule from 2017 to 2021. The Aringer Anna Zoological Park in Bandalur has received a pair of Asiatic lions from Indoor Zoo under an animal exchange program designed to strengthen conservation breeding and diversify the genetic pool of the endangered species in captivity. The lion sorts from two distinct gene pools will be integrated into the zoo's lion safari after they finish a 4-week quarantine under vet supervision. Deputy Director Manish Meena said that genetic distinction between the two animals was central to the acquisition. He also said that after quarantine, the lions will be housed in adjoining enclosures to build compatibility before being introduced into the safari area. Going to Bengaluru now, Chief Minister Siddaramaiah will lay the foundation stone for a new international cricket stadium at Anekal near Bengaluru on May 23rd. The proposed stadium, with a seating capacity of 80,000, is expected to become the second largest cricket stadium in India after the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The rupees 943 crore project will be developed on 75 acres of Karnataka Housing Board land at Suryanagar in Anekal and is expected to be completed within 3 years. The project forms part of a larger sports complex approved by the state government last year. Karnataka will celebrate the 12th International Day of Yoga on June 21, 2026 under the theme Yoga for Health, Knowledge and Global Peace. In line with the Ministry of Ayush guidelines, the state government is organizing a large-scale program across Karnataka to promote yoga and holistic well-being. The main state-level event will be held at Vidhan Sautha, Bengaluru, with around 5,000 participants expected to take part in the mass yoga demonstration based on the common yoga protocol. The program is expected to be attended by the Honorable Governor, Chief Minister, Ministers, legislators, officials and yoga gurus. Taking you to Hyderabad now, Chief Minister Revanth Reddy has announced major development plans for Telangana's urban areas. In a meeting yesterday, he discussed creating growth corridors that will connect important cities across the state. The government will develop 3 main corridors. The first connects Warangal, Karimnagar and Khammam. The second links Mehboob Nagar, Bhootpur and Jadcherela. The third connects Kotagurem, Palvancha and Sujata Nagar. These corridors will improve transportation and boost economic growth. The Chief Minister emphasized that cities must plan for the next 25 years. Every municipality will get outer ring roads and modern infrastructure. The plans include solid waste management systems and water treatment plants. And Farhat, over to you now for rest of the news.
0: जी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा है कि उन्होंने जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ाने, सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। दिल्ली में मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के बड़े ड्रेनों से 76% गाद निकाला जा चुका है। आधुनिक मशीनें, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच कल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ कल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले के लोगो का अनावरण किया। इस लोगो में त्रिशूल दर्शाया गया है जो नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि ये लोगो की भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। वहीं महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबड़ेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नतीजे देख सकेंगे। इस वर्ष पहली बार सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू की गई थी। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15,000 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अंतिम परिणाम तीसरे और चौथे सेमेस्टर में प्राप्त अंकों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं। सुभद्रा, तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज सुबह से ही हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने भी आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगर कोलकाता की बात की जाए तो वहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान में बदलाव आएगा और ये 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। द टेम्परेचर विल हैव बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस।
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज है 14 मई 2026।
1: 1607, द फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका, जेम्सटाउन वर्जीनिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1787, डेलीगेट्स गैदर इन फिलाडेल्फिया टू ड्रॉ अप द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
0: और 1796 में आज ही के दिन चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला सफल टीकाकरण किया जिससे आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव पड़ी।
1: फर्स्ट एडिशन ऑफ लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज वाज पब्लिश्ड दिस डे इन 1842।
0: 14 मई 1878 को वेस्लिन का ट्रेडमार्क पहली बार आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत किया गया।
1: एंड 1900, द ओलंपिक गेम्स ओपन इन पेरिस, हेल्ड एज पार्ट ऑफ द 1900 वर्ल्ड्स फेयर।
0: 1948 में इसराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डेविड बेन गुरियन को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं 14 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बना। 1954 में आज ही के दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जी वी मावलंकर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा संविधान के प्रति निष्ठा, जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है।
1: Air India inaugurated its first scheduled service from Bombay to New York on May 14, 1960, utilizing a Boeing 707-420.

0: याद करेंगे.
1: यस, ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेटेस्ट अमेरिकन एंटरटेनर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रैंक सिनाट्रा, हु पास्ड अवे दिस डे इन 1998. सिंगर एक्टर सिनाट्रा रोज टू फेम सिंगिंग बिग बैंड ट्यून्स विच आर जैजी. लेटर हिज हिट सॉन्ग्स ऑफ द 1940s and 1950s went on to appear in films that earned him several Oscars and Grammys. He left behind a massive catalog of work that includes iconic tunes like Strangers in the Night, It's Playing in the Background, My Way, New York, New York, etc.

0: और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते रहे। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरूआत की थी 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से। वहीं 1958 में उनकी दूसरी सफल फिल्म आई नील आकाशेर, और इस महत्वाकांक्षी फिल्म में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से की थी। तो आइए इसी फिल्म से ये प्यारा संगीत सुन लेते हैं।
1: नहीं।

1959 की ये बंगला फिल्म जिसने मृणाल सेन को पहचान दिलाई थी और महादेवी वर्मा की कहानी पर यह आधारित फिल्म थी। 1960 की उनकी फिल्म बाईशे श्रावण जो कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी और आकाश कुसुम ने एक महान निर्देशक के रूप में मृणाल सेन की छवि को विस्तार दिया। मृणाल की अन्य सफल बंगाली फिल्में रही इंटरव्यू, कलकत्ता 1972 और पदातिक 1973 में आई, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। तो आइए सुन लेते हैं भुवन शोम के ये प्यारा सा गीत।

0: इसमें भुवन शोम की भूमिका निभाई थी उत्पल दत्त ने, और ये एक सख्त बूढ़ा अकेला रेलवे अफसर होता है जो रिश्वतखोरों से नफरत करता है, नियम का पक्का होता है। और उसकी मुलाकात होती है गौरी से, जो बहुत ही सादगी के साथ रहती है, और उसके बाद दिन की कहानी शुरू हो जाती है।
1: And you know, friends, we just talked about Frank Sinatra a little while ago. So, crooner to another crooner now, guitar virtuoso, blues really king, or B.B. King, went away this day in the year 2015. King of the blues, B.B. King began as a disc jockey in Memphis before finding fame as a blues and R&B guitarist. King introduced a sophisticated style of

0: Hollywood film director producer George Lucas celebrates his birthday today, and we all know his best known film, the two Star Wars trilogies, the four Indiana Jones movies, and American Graffiti. He started producing films as a student at the University of Southern California and was awarded a scholarship by Warner Brothers in 1967. Since then, his own production company, Lucasfilm, owns Industrial Light and Magic and Pixar Animation Studios. And also 1984 Facebook man Mark Zuckerberg was born this day in White Plains, New York. This American computer programmer founded Facebook, a social networking website, in 2004, co-founded rather. Zuckerberg took the company public in May 2012, and with, of course, majority shares, he became the world's youngest self-made billionaire in 2008 at age 23.
1: और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जगदीश चंद्र माथुर ने, जिन्होंने आकाशवाणी में भी काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में वो लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ इन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रेडियो नाटक भी लिखे, जिसमें ओ मेरे सपने, बंदी, धरती का सवाल, अंधेरे के बाद शामिल हैं। इसके अलावा उनके कई सारे निबंध संग्रह आए, नाटक और रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। कोणार्क 1951 माथुर जी की पहचान बनी। रीढ़ की हड्डी 1947 में प्रकाशित हुई। 20 पन्ने का ये एकांकी पर पूरा समाज दिखाई दिया। और इसके अलावा 1969 में पहला राजा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया।
0: And friends, Australian-born actress Kate Blanchett celebrates her birthday today. And another Hollywood great, Rita Hayworth, passed away this day. Rita achieved fame during the 1940s, appearing in 61 films over 37 years. The press coined the term the love goddess to describe Hayworth after she had become the most glamorous screen idol of the 1940s. And Jay Bekenstein, saxophone player, co-founder of smooth jazz outfit Spyro Gyra, turned 75 years of age today. Grew up in a musical family. His mother was an opera singer, father a jazz buff. Jay grew up listening to music of Louis Armstrong, Charlie Parker, Sonny Rollins, etc. Along with Spyro Gyra, Bekenstein also plays for other musicians. A guest with Dream Theater, here's a snatch of his solo, Another Day, that's what you're listening to.

0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन है प्रशंसित भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता सचिन खेड़कर का, जो हिंदी, मराठी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने फिल्म तेरे नाम देखी होगी तो सलमान खान के बड़े भाई के रूप में वो नजर आए थे, तो उसी फिल्म से ये डायलॉग सुन लेते हैं।
1: मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मार पिटाई की कॉलेज में।
2: मार पिटाई नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचा ना तो एलेक्स के लोग कनक को मार दिए होते।
1: अरे तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के फटे में टांग डालने की? हाँ,
2: कमाल कर रहे हैं। मेरा दोस्त है, अगर कोई आपको मारने आता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है।
1: नहीं था, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह। अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है?
3: एंड फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बेस प्लेयर, लीड वोकलिस्ट, द रॉक आइकॉन ऑफ क्रीम सुपर ग्रुप जैक ब्रूस टुक बर्थ दिस डे 1943 विद हिज गिब्सन EB3।

0: और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा, क्योंकि समय हो चुका है 7:59:33। तो सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद

0: संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
7: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2,441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र,

0: भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रूपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrzad Pointkeyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
4: Assam cabinet should pass uniform civil code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC

0: test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets one-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयत सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारिजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निजाम में इसलाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंता बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबिना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायराकार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसा सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड

0: चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिजा के तकर्रात, म्यूनिसिपल तकर्रात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रात घपलों से मुतालिक मामलों को सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबूतोशी के बाद टीएमसी हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुक्काम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे जो उनके पांच मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत-ए-खारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान की सिर्फ पांच महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमूई मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 वर्षों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का सातवां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आजम के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ

0: ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिली, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज्यालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूद एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी हैं। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संघी मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संघी मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की। इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गिजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 55 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और यह है म्यूजिकल दिल लगी। और म्यूजिकल दिल लगी आप सुनते हैं रास्ते में जाते हुए, कि आप ऑफिस पहुंचने की जल्दी में हैं या फिर घर में हैं, तो इत्मीनान से सबको भेज चुके हैं। लेकिन इन सब में जैसे म्यूजिकल दिल लगी का नाम आता है ना, तो ये जो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल जाती है ना, इसकी तो कोई बिसात ही नहीं है, इसका तो कोई पैरेलल है ही नहीं। और वैसे सच कहें तो ये जो मुस्कुराहट है ना, ये किसी का भी दिन बना देती है, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो या ऑफिस का गार्ड ही क्यों ना हो। कि आप जब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो भी आपने एक मुस्कुरा के देख लिया उनको, तो सोचिए कि उनका भी दिन बन गया। इतनी छोटी सी चीज लेकिन इतना बड़ा फायदा। इसलिए आज की शुरुआत भी हम ऐसी ही एक मुस्कुराहट वाले गाने के साथ कर रहे हैं। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से।

प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

करने लगी है। सोचे दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक क्या होता है, और उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें। वैसे तो सुबह से ही ठीक रखना जरूरी है, लेकिन उस समय आप एक तो जब बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी है कि आप ढीले ढाले सूती कपड़े पहने या छाते का इस्तेमाल करें, और अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखें, यानी खूब पानी पिएं। बेशक उसमें नींबू पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है। खाना भी खा रहे हैं तो हल्का सुपाच्य भोजन अगर आप लेंगे तो आप ठीक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्यास नहीं भी लग रही होती तो भी जरूरी है कि छाछ, आम पन्ना, नारियल पानी जो आजकल काफी कॉमनली मिल जाते हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और खाना जब हम कम खाने की बात करें, सुपाच्य या हल्के भोजन की बात करते हैं, तो उसमें आप जो मौसमी फल हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा, ककड़ी, संतरा, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जो भारी मसालेदार खाना होता है या बासी खाना होता है, उसे खाने से आप बचें, ताकि आप बिल्कुल ठीक रह सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं कि हम ठीक ठाक रहें। वैसे हम सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब कोई बताता है ना तो वापस याद आता है कि अरे सुबह से तो हमने सिर्फ 2 ही ग्लास पानी पिया था, अभी तो हम और पी सकते हैं। तो एक छोटा सा टिप पूरे दिन को ठीक रखने के लिए या पूरे दिन अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए जरूरी हो जाता है। बस ऐसे ही टिप्स लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं म्यूजिकल दिल लगी।

8:54 और ठीक 4 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ट्यून इन किया है आपने और ये है म्यूजिकल दिल्ली। वैसे इस समय जब 9 बजने के आसपास का समय है तो भी गर्मी जो है वो परेशान

बिल्कुल ऐसी ही प्यारी है हमारी और आपकी दोस्ती भी, जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है। लेकिन फिलहाल पूनम चलती है, पर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे एआरएफएम गोल्ड के साथ ही। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी का सफर जारी रहेगा। नीतू होंगी आपके साथ, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हम और आप चाहे जितने परेशान हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और इसीलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि बाहर निकलिए, थोड़ा सा खुली हवा में सांस लीजिए, जी भर के लंबी गहरी सांसें। मैं जब भी आकाशवाणी में एंटर करती हूँ ना, तो एंट्री के साथ ही जब वो आता है खुला मैदान जहां ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो हर बार ना मुझे दो फुदकती हुई लव बर्ड्स दिखती हैं, और वो दोनों ऐसे फुदक फुदक के चल रही होती है कि उन्हें देखते ही ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यही फायदा है बाहर निकलने का। दीवार के साए में कब तक बैठे रहेंगे, बाहर निकलिए। चलिए गाना सुनते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, मैं हूं नीतू आपके साथ, और म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप।

बिल्कुल रुक जाएगी। आकाशवाणी कब से सुन रहे हैं आप? मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरे मम्मी और मेरे पापा भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो यानी कि आकाशवाणी को हम सब जमानों से सुनते आ रहे हैं और 90 वर्ष अब पूरे होने जा रहे हैं, जिसका जश्न भी हम सब मिलकर मना रहे हैं। तो इस जश्न में थोड़ा सा हम आपके ज्ञान को भी जांचते हैं कि आखिर कितने बड़े फैन हैं आप आकाशवाणी के। तो इसीलिए हम हर बार हर रोज एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आज का सवाल ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप उन केंद्रों का नाम भी बता देंगे तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर आप सिर्फ केंद्र कितने थे ये भी बता देंगे तो भी चलेगा। और जिसने सही जवाब दिया उनमें से कोई एक लिसनर आज आकाशवाणी पर हमसे बात भी कर सकता है, यानी हम दो लोग आपस में बात करेंगे जिसे सब लोग सुनेंगे। और आपको अपने जवाब भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आप हमेशा से जानते हैं यही है fmgoldairdelhi@gmail.com, जिस पर आपको इस सवाल का जवाब भेजना है जो मैंने अभी पूछा। दोबारा से दोहरा देती हूँ कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? आप जवाब खोजिए, भेजिए, तब तक मैं गानों का सिलसिला तो जारी रख ही रही हूँ ना।

बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ना हम एक साथ जब कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ हारते भी हैं, बहुत कुछ जीतते भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका फोकस ना एकदम अटल होता है और इसीलिए वो बहुत सारी चीजें इतने महारत के साथ कर लेते हैं कि बस हमें लगता है वाओ, तभी वो रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब जैसे ह्यूमन क्रेन के नाम से मशहूर एगमॉन्ट हैं, जिन्होंने अपनी गर्दन के सहारे 9,860 किलो की बस को 20 मीटर तक खींचकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहां हम लैपटॉप पर काम कर करके लोगों की गर्दन दर्द कर लेती है और वहां उन्होंने गर्दन से बस को खींच लिया। कितनी स्ट्रांग होगी ना उनकी नेक। कुछ वक्त पहले अमेरिका की एक 90 वर्ष की एथलीट महिला ने 2 मिनट 52 सेकंड तक हेड हैंग पोजीशन में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। 90 साल की उम्र में इतनी हिम्मत करना ही बड़ी बात है, तभी तो लोग जो हैं ऐसे लोगों पर आशिक हो जाते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

ये है म्यूजिकल दिल्लगी। मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अभी फिर से पूछ लेती हूं क्योंकि कुछ जवाब आए हैं, ज्यादातर सही हैं, जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ज्यादातर जवाब सही हैं। तो मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? और जवाब आपको भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तो बस आप इन सवालों के जवाब भेजिए, तब तक मैं आपको गाने सुनवा रही हूँ, आप गानों का आनंद उठाते रहिए।

एक महिला जो घर संभालती है, एक महिला जो बाहर काम भी करती है, एक महिला जो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन वही महिला जो है कई बार हिंसा का सामना भी करती है, तो ऐसी ही महिलाओं के लिए एक व्यवस्था है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जहां पर हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर सखी पर एक जगह पर पुलिस डेस्क, कानूनी सहायता, चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधा के साथ साथ अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वन स्टॉप सेंटर योजना इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत अम्ब्रेला योजना की एक उपयोजना है। ये योजना महिलाओं को सुरक्षित माहौल देकर उनके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम और आप तो एक दूसरे के लिए हैं ही, लेकिन ये पर्यावरण भी तो हमारे लिए ही है। अभी तक हम वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन सुनते आए थे, पिछले कुछ सालों में इनमें नॉइज पोल्यूशन भी जुड़ गया है, लेकिन अब ये लिस्ट ना कुछ बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। अब इसमें लाइट पोल्यूशन भी शामिल हो गया है। पिछले 8 सालों में दुनिया भर में आर्टिफिशियल लाइट 16% तक बढ़ी है, जिसका असर हमारी रातों की नींद और चैन पर तो पड़ ही रहा है, जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। 20 से 60% तक समुद्री कछुए कृत्रिम रोशनी के कारण रास्ता भटक जाते हैं। अमेरिका में सालाना 1 बिलियन से ज्यादा पक्षी प्रकाश प्रदूषण के संपर्क में आने से अपनी जान गंवा बैठे हैं, और रातों की शान जुगनू, जिन्हें जो हम देखते रहना चाहते हैं, जंगलों में लोग जाते हैं इसलिए ताकि जुगनू की चमक देख सकें, वो जुगनू की 70% आबादी भी इस चमकती रोशनी की वजह से प्रभावित हुई है। सोचिए, क्या हम सच में दुनिया को बेहतर बना रहे हैं? इस पर विचार करने की तो सच में जरूरत है, आपको नहीं लगता? और सिर्फ विचार ही नहीं, एक्शन लेने की भी जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जुगनू सिर्फ गानों में ही रह जाएं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी और हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर जश्न भी मना रहे हैं, जिसमें हम हर रोज आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल ये था कि जब देश आजाद हुआ तो आकाशवाणी के कितने केंद्र थे। सही जवाब तो आपको वो लिसनर ही बताएंगे, लेकिन हाँ, जिन्होंने सही बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सबके नाम मैं फटाफट बता देती हूँ। नवीन भाटिया, तिलक राज अरोड़ा, संतोष सक्सेना, वरुण गुप्ता, सुशील आर पठानिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, हेमंत साखरदांडे, मनीषा साखरदांडे, शत्रुघ्न लांबे, सुदर्शन मुखी, अरुण अरोड़ा, एसपी गोयल, सचिन कुमार, देव वर्मा और प्रकाश गोगिया, इन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन सबसे पहला सही जवाब जिन्होंने दिया उनका नाम है आशीष गायकर और वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो आशीष जी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?

0: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, और जो तीन केंद्र थे वो अब उधर चले गए हैं जो।
1: हाँ, वो अब उधर चले गए।
0: जी
1: हाँ
0: जी,
1: जी मैम।
0: आपने मतलब मेल में किसी से पूछ के लिखा था क्या जवाब?
1: नहीं नहीं नहीं मैम,
0: चलिए ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। जो छह केंद्र थे, आप ये बताइए, आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं?
1: मैम, मैं पिछले 10 सालों से आकाशवाणी सुन रहा हूँ, और आकाशवाणी में जो आप सारी बातें बताते हैं हमेशा से हर एक प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लियर होती है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा, अच्छे शब्दों का चयन करते हो आप जब भी बात करते हो, और वो हमें बहुत पसंद आती है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए।
1: मैं आईटी में डिजास्टर रिकवरी मैनेजर हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एक कंपनी में, इंटेल सॉल्यूशंस में। और मैं हमेशा, मतलब जब भी ड्राइव करके जाते हैं या घर पे जब भी रहते हैं, हम हमेशा एफएम गोल्ड आकाशवाणी सुनते रहते हैं मैम।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई आपका पसंदीदा गाना ऐसा है जो हम आपको सुनवा सके? क्योंकि आपने सही जवाब दिया था मेल पर, भले ही आपने ऑन एयर गलत जवाब दिया, लेकिन चलिए कोई नहीं, आपने मेल पर सही जवाब दिया था, तो बताइए कौन सा गाना हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मैं मेरी महुआ सुनना चाहूंगा, महुआ फिल्म से।
0: चलिए ठीक है, तो आप ये गाना सुनिए, इंजॉय कीजिए, और हम लौट कर आते हैं फिर से। आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, और हम क्योंकि जो जश्न मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर, और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आकाशवाणी के कितने केंद्र थे जब देश आजाद हुआ, तो 6 केंद्र थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, और अब ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के भारत में 470 से ज्यादा प्रसारण केंद्र हैं। आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क्स में से है, जिसमें हम सूचना शिक्षा के साथ साथ सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं संगीत का, और संगीत के कार्यक्रमों का जब आनंद लेते हैं और जब बात होती है, तो फिर चाहे संगीत फिल्म संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सबका आनंद लिया जाता है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम को भी आपने आकाशवाणी पर सुना होगा। पहली बार ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया था 1952 में, और तब से अब तक इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर किया जाता रहा है। और अब अगला जो गाना आ रहा है वो आशीष गायकर की पसंद का आ रहा है, महुआ फिल्म से, तो आप इस गाने का आनंद उठाइए।

आशीष गायकर की पसंद पर आपने ये गाना सुना था, जिन्होंने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है ये एफएम गोल्ड, सुन रहे हैं आप। और अब वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, तो आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड। आपसे 10:30 बजे मुलाकात होगी दिल का मेल बॉक्स में, और वहां पर भी शिरकत करने का एक ही तरीका है, fmgold@delhi.gmail.com। उस पर मेल कीजिए, अपनी पसंद के गाने हम तक भेजिए और हम आपको आपकी पसंद के गाने सुनवाएंगे। अभी तो आपको मेरी पसंद से काम चलाना पड़ेगा, और ये आखिरी गाना आप सुनिए, एंजॉय कीजिए, नीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूलभरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री ग्वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमरीका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। शी जिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
1: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेट भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
2: इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। जेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और यूएई के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

101.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू एक बार फिर से हाजिर है और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके लिए, जो कि हम लेकर आते हैं हर रोज 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स। इसमें आप भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है एड्रेस अगर आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो। एक बार फिर से सुन लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की उस गाने से जिसकी फरमाइश बहुत सारे लोगों ने भेजी, यानी जग्गर राम साहू, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या, इन सब ने सुनना चाहा है प्यार झुकता नहीं फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप भी सुनिए, आनंद उठाइए इस गाने का और फिर शायद आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए, क्या पता, देखते हैं। फिलहाल तो इस गाने को सुनिए।

ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, बल्कि कुछ जगहों को देख के आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। जैसे कुछ गाने भी आप सुनते हैं तो आपको कुछ कुछ याद आ जाता है कि ये गाना अच्छा मैंने पहली बार शायद वहां सुना था, शायद ऐसा हुआ था, और उस गाने से जुड़ा पूरा एम्बियंस जो कि आपके दिलो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था, लेकिन उस गाने को सुनकर आपको याद आ जाता है। तो ये गानों का मजा है, इस मजे को उठाते रहिए और ऐसा ही गाने सुनवा रहे हैं आप लोग आज हमें। तो एक गाना और है जिसकी फरमाइश आई है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव, इन सब ने सुनना चाहा है। फिल्म है कामचोर, गाना है ये वाला।

ये गाना त्रिशूल फिल्म का था और आप इस गाने को सुनना चाहा था महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने। इनके अलावा ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा भी यही गाना सुनना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं आप सब ने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और अब जिस गाने की बारी है, ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है लेकिन इस गाने को भी कई लोगों ने सुनना चाहा है। दिग्दर्शन कविता गौर और इनके अलावा मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर और ऋतिक, ये सब सुनना चाहते हैं मेरे अपने फिल्म का ये गीत।

हर कोई ऐसे ही चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। हालांकि अपने आसपास बहुत लोग होते हैं, बस कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती, कई बार अपने अपने जैसे नहीं लगते, बस इतना सही फर्क है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप खुद अपना बनने की कोशिश करें, तो शायद दूसरे भी आपके अपने बन जाएंगे। ऐसे ही चलती है ना दुनिया, वो गाना है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही आप अपने बनने की कोशिश करेंगी तो शायद बहुत सारे अपने आप को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की फरमाइश पर, कुदरत फिल्म से।

इस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग के बाद बढ़ते हैं अपने आखिरी गाने की तरफ, जो कि सतीश अनेजा और बिमल अनेजा की फरमाइश पर है। ये भी एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है और राजेश खन्ना के सुपरहिट गानों में इसे शामिल किया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपको सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गाना। नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता पहले और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से

0: मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The two-day meeting of BRICS foreign ministers being hosted by India is underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries are participating in the meeting. Making the initial remarks, Dr. Jayashankar said that the meeting is happening at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, Economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. He added that there is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role.
3: Our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively.
2: The theme for India's BRICS chairship this year is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Modi's Humanity First and People-Centric vision for BRICS. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Director General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that from agriculture, digital infrastructure, healthcare and clean energy to manufacturing and technology partnership, the next phase of India-Africa collaboration will be built on higher value products and integrated supply chains. Speaking at the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday, the minister highlighted how India and Africa together can shape a more inclusive, resilient and innovation-driven future for the Global South. Mr. Goyal said he looks forward to a very successful India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held from the 29th to 31st of this month in New Delhi, alongside the 4th India-Africa Forum Summit. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oilseeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. In Uttar Pradesh, a sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state, with storms, heavy rain and lightning strikes claiming 60 lives in the last 24 hours. More than 100 people got injured also and have been admitted to hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Benchmark equity indices Sensex and Nifty climbed in early trade today, driven by buying in banking shares and positive cues from Asian markets amid optimism surrounding the ongoing US-China summit. The 30-share BSE Sensex jumped 450.51 points or 0.6% to 75,059.49 in early trade. Nifty advanced 169.95% points to 23,582.55. And that is the end of this news bulletin.

बात तो सही है, किसी ना किसी चीज से तो आपको दिल लगाना ही पड़ता है, और अक्सर होता यही है, हर इंसान की कुछ ना कुछ पसंदीदा चीजें जरूर होती हैं। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, और जिनको घूमने का शौक होता है उन्हीं के लिए है हमारा ये प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम बातें करते हैं अपने ही देश की बेहतरीन, खूबसूरत और न जाने कैसी कैसी जगहों की, ऐसी जगह जो वाकई दिल को लुभा ले एक ही नजर में। अब आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जहां सबसे ज्यादा मशहूर है नक्की झील। यहां मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था।

आप यहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या शाम के समय सनसेट का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास छोटे छोटे कैफेज हैं, स्थानीय बाजार हैं जहां से आप राजस्थानी हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन आपको अगर असली कारीगरी देखनी है तो फिर जाइएगा दिलवाड़ा मंदिर। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने ये जैन मंदिर इतने भव्य हैं कि आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। आह और वाह दोनों निकलती हैं एक साथ। एक एक कोने पर बारीक नक्काशी की गई है, चाहे छत हो या खंबे या दीवार, हर एक कोना ना कला का अद्भुत नमूना है। इसीलिए तो दुनिया इन्हें चाहती है और इन्हें देखने के लिए आती है।

माउंट आबू की बातें हो रही हैं और अगर आप माउंट आबू के नेचुरल परिदृश्य को देखना चाहते हैं यानी कुदरती नज़ारों को देखना चाहते हैं तो फिर गुरु शिखर एक बेहतरीन जगह है। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जहां से आसपास के पहाड़ों और पूरे माउंट आबू का दृश्य आपको दिखाई देता है। गुरु शिखर पर माउंट आबू वैधशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है। गुरु शिखर की यात्रा करने के लिए आपको 15 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद चोटी तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी और सीढ़ियां अगर आप चढ़ ही सकते हैं तो फिर तो आप आधार देवी मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर है माँ दुर्गा का मंदिर, ये भी गुफा मंदिर है। लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और अंदर के मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा रेंगना पड़ेगा। लेकिन यहां की पहाड़ी से ना इस पूरे हिल स्टेशन का बर्ड आई व्यू दिखता है।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।

100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है तस्वीर। मैं हूं नीतू आपके साथ और आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और माउंट आबू जाएं तो वहां का सनसेट पॉइंट जरूर देखिए, वहां से ना डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पहाड़ों के पीछे छुपता हुआ लाल लाल सूरज एकदम अलग ही आभा देता है। और यहाँ का हनीमून पॉइंट भी काफी मशहूर है, जहां से आप घाटियों का एक विशाल विस्तृत दृश्य देख सकते हैं। वन्य जीवों से आपको प्यार है तो फिर जाइए माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर जानवरों और पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। वैसे भी जब आप नेचुरल जगहों पर जाते हैं ना, तो वहां चलना अपने आप में ही खूबसूरत लगता है।

ये जो फिसलन की बात हुई है ना, ये माउंट आबू में आपको मिल सकती है अगर आप बरसात के मौसम में जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बरसात का मौसम अवॉइड कीजिए। माउंट आबू के आसपास अगर आप देखना चाहते हैं तो माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में है अचलगढ़ किला। किला जो है वो मूल रूप से परमार वंश के शासकों ने बनवाया था, बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया और इसे अचलगढ़ नाम दिया। किले का पहला द्वार है हनुमान पोल जो निचले किले का प्रवेश द्वार है। थोड़ी चढ़ाई के बाद किले का दूसरा द्वार आता है चंपा पोल और आंतरिक किले के प्रवेश द्वार, ये जो है ये आंतरिक किले का प्रवेश द्वार है और इस किले के अंदर और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप शायद उस दौर में पहुंच जाएं।

ये पिसल आप कभी भी सुन लें, आपको वो पूरा माहौल याद आ जाता है जो उस फिल्म में है। ये कमाल है गानों का, म्यूजिक का, गीतों का, जो हम आकाशवाणी पर सुनते हैं, सुनाते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आपसे बांटते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं नीतू आपके साथ और आप सुन रहे हैं तस्वीर। तस्वीर में आज बातें हो रही हैं माउंट आबू की, जहां यूं तो हर तरह का भोजन मिलता है, लेकिन राजस्थान जा रहे हैं तो बनता है ना वहां का पारंपरिक राजस्थानी खाना खाना, उसका आनंद उठाना, यानी कि दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, राजस्थानी मिठाइयां, ये सब आपको चखना ही चाहिए वहां जाने के बाद। शॉपिंग करनी है तो यहां के लोकल बाजार का चक्कर लगाएं। बंधेज की साड़ियां, हस्तशिल्प, संगमरमर से बनी कलाकृतियां आप वहां से यादगार के तौर पर ला सकते हैं, अपने अपनों को दे सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, जिन्हें वाकई में वो चीजें पसंद आएंगी। हालांकि आजकल हर जगह आपको हर स्टेट की जो कलाकृतियां हैं मिल जाती हैं, हर स्टेट के कपड़े मिल जाते हैं, कलाकारी मिल जाती है, लेकिन जहां जाकर वहां जहां की वो चीज है ना, वहां से जब लाते हैं ना, तो उसका अलग ही मजा होता है।

माउंट आबू घूमने जा रहे हैं उससे आपको प्यार हो गया है तो फिर सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। गर्मी में तो गर्मी होगी और बरसात में भी आपको घूमने का मजा नहीं आएगा क्योंकि हर तरफ फिसलन हो जाती है, इसलिए सर्दियां बेस्ट हैं। माउंट आबू का निकटतम रेलवे स्टेशन है आबू रोड जो लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगर फ्लाइट लेना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर, वहां से आपको बस या टैक्सी लेकर माउंट आबू पहुंचना होगा।

बेकरार होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपके पास टाइम है, नहीं है तो टाइम निकाल सकते हैं आप और निकल जाइए कहीं घूमने के लिए, चाहे घर से बाहर पार्क तक चले जाइए, तब तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा घूमिए फिरिए, जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। चलते चलते एक और बेहतरीन गीत आपके लिए छोड़े जा रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉ जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. A two-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, peace and security remain central to the global order. He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
4: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.

0: आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई ऊर्जा, नए विचार और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। इस खास प्रस्तुति में आपका दिल से स्वागत है। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और उम्मीद है आप सभी अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर नया दिन हमें एक नया मौका देता है कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का। तो चलिए इस सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए और याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर पल है खास।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी प्रेम नगर। ये आकाशवाणी है। बस ये तीन शब्द सुनते ही जैसे यादों की एक पूरी दुनिया आंखों के सामने उतर आती है। वो सुबह की भक्ति धुने, दोपहर के समाचार, शाम की कहानियां और रात में बजते मधुर गीत। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं था, यह हर घर का सदस्य था। एक ऐसी आवाज जो दिलों तक पहुंचती थी।

आकाशवाणी के 90 साल। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसने देश के कोने कोने को एक सूत्र में बांधा, उस आवाज की जिसने भावनाओं को शब्द दिए, दूरियों को रिश्तों में बदल दिया। जब टेलीविजन नहीं था, मोबाइल और इंटरनेट का दौर नहीं था, तब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम था। गांव की चौपाल हो या शहर का ड्राइंग रूम, हर जगह रेडियो की अपनी एक अलग पहचान थी। किसानों के लिए खेती की जानकारी, विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए विशेष प्रस्तुतियां और जवानों के लिए देशभक्ति के गीत। आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि समाज को शिक्षित भी किया, जागरूक भी बनाया। युद्ध के कठिन समय हो या देश के ऐतिहासिक क्षण, आकाशवाणी हर परिस्थिति में देशवासियों की आवाज बनी। रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि इसमें चेहरा नहीं था, फिर भी हर आवाज एक अपनापन से जुड़ जाता था। दादा दादी से लेकर आज की नई पीढ़ी तक हर किसी की यादों में रेडियो की एक खास जगह है। आज तकनीक बदल गई है, सुनने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन रेडियो का जादू आज भी वैसा ही है, क्योंकि आवाज जब दिल से निकलती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं बल्कि भारत की भावनाओं, संस्कृति और यादों का इतिहास है। तो आइए इस अनमोल सफर को सलाम करें, उन आवाजों को धन्यवाद जिन्होंने वर्षों तक हमारे जीवन में संगीत, संवेदना और विश्वास घोला।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म थी तलाश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने न सिर्फ आसमान को छुआ बल्कि समाज की सोच को भी नई उड़ान दी। ये कहानी है सरला ठकराल की। महज 21 साल की उम्र में सरला ठकराल ने अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी मुश्किल था, सरला ने आसमान को अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने जिप्सी मॉट विमान को अकेले उड़ाया और वो भी 1000 घंटे की उड़ान पूरी की। और ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी दोस्तों, ये एक संदेश था कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी आसमान दूर नहीं है। लेकिन जिंदगी ने उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा। जब उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखा तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से सिविल एविएशन ट्रेनिंग पर रोक लग गई। किसी और के लिए हो सकता है ये अंत होता, लेकिन सरला जी के लिए नहीं। उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवारा, खुद को एक नई पहचान दी, एक सफल उद्यमी, फैशन डिजाइनर और पेंटर के रूप में। सरला ठकराल सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो हर उस महिला की प्रेरणा है जो हालातों से लड़कर अपनी जीत की कहानी लिखती है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स वाला देश है, लेकिन इस उड़ान को आसान सरला ठकराल जी के जैसे लोगों ने बनाया। तो उनकी इस कहानी को हर उस महिला तक पहुंचाइए जिसे अपने सपनों को पंख देने की जरूरत है, क्योंकि जब हौसले आसमान छूने लगते हैं उड़ान कहानी बन जाती है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और खूबसूरत और स्वस्थ त्वचा कौन नहीं चाहता, लेकिन हर बार महंगे प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं होते। कभी कभी हमारी रसोई में ही छुपा होता है आपकी त्वचा को चमकाने का राज। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ आसान और नेचुरल ब्यूटी आइस क्यूब्स के बारे में, जिन्हें आप घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल आइस क्यूब्स। एलोवेरा जेल को 4 घंटे के लिए फ्रीज कर लें और रोज चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ऑयल कंट्रोल होता है और सूखेपन और खुजली से राहत मिलती है। खीरे के जूस के आइस क्यूब्स। खीरे का रस फ्रीज करें और रोज इस्तेमाल करें। इससे जो आपकी त्वचा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होगी, जल्दी से चमक आएगा और आंखों के किनारे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एक्ने होते हैं, वो कम होने में मदद मिलती है। और आपको एकदम से इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ट्राई कीजिए चुकंदर और गुलाब जल के आइस क्यूब्स। चुकंदर के जूस में थोड़ा सा रोज वाटर मिलाकर

फ्रीज करें। रोज चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा गुलाबी, चमकदार, ताजी दिखती है, साथ में पिगमेंटेशन भी कम होता है। और आखिर में कस्तूरी हल्दी और गुलाब जल के आइस क्यूब्स, इसे रोज चेहरे पर लगाने से स्किन रेडिएंट बनती है, एजिंग के संकेत धीमे पड़ते हैं और मुहासे कम होने में मदद मिलती है। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि हर स्किन, हर त्वचा जो है वो अलग होती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी प्रेम कहानी। और इन दिनों भारतीय पारंपरिक फैशन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, चाहे वो उच्च फैशन के मंच हो, ऑस्कर समारोह हो या पश्चिमी संगीत वीडियो, हर जगह भारतीय परिधान और आभूषण छाए हुए हैं। जो बिंदी हम जल्दी में लगाकर भूल जाते हैं, वही बिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय फैशन बन चुकी है। जो झुमके हमारी दादी नानी की याद दिलाते हैं, आज वही बोहो एथनिक शैली के आभूषण बनकर पूरी दुनिया को लुभा रहे हैं। हमारा दुपट्टा वो क्या बन गया है? वो स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बनकर विदेशी अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है। नाम बदला है पर पहचान वही है दोस्तों। हमारी मेहंदी, जिसे हम खुशियों और रस्मों में रचाते हैं, वही मेहंदी अब हेना टैटू के नाम से वैश्विक चलन बन चुका है। और हमारी बांधनी प्रिंट, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। बांधनी प्रिंट का लहंगा, जिसके हर रंग में परंपरा की कहानी छुपी है, वह आज लेयर्ड स्कर्ट बनकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन का हिस्सा बन गई है। यहां तक कि हमारी धोती और कोल्हापुरी चप्पलें, जिन्हें हम कभी साधारण समझ लिया करते थे, आज वही बोहो शीक शैली के नाम पर दुनिया भर में प्रचलित है। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या अपना रही है, सवाल यह है कि कहीं हम तो नहीं इन्हें भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को अपनाना कोई चलन नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ है। तो अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, एक बिंदी लगाइए, झुमके पहनिए, दुपट्टे को शान से ओढ़िए, क्योंकि जो अपना है वही सबसे खूबसूरत है। फैशन बदलता है लेकिन पहचान नहीं। जो रंग अपनी मिट्टी में है वो कहीं और कहां, जो बात अपनेपन में है वो बाजारों में कहां। दुनिया सजा रही है जिसे, वो हमारी पहचान है, अपना लो उसे दिल से, यही सबसे बड़ा सम्मान है। अपनी संस्कृति को अपनाई, क्योंकि असली शैली वही है जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हो।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म अभिमान से। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत की मिट्टी में कला बसती है, लेकिन क्या कभी ऐसे गांव के बारे में आपने सुना है जहां हर घर में एक कलाकार रहता हो, जहां दीवारें भी कहानी सुनाती हों और रंगों में संस्कृति सांस लेती हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं रघुराजपुर उड़ीसा का एक ऐसा गांव जिसे हेरिटेज आर्ट विलेज कहा जाता है। ये छोटा सा गांव पुरी के पास स्थित है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि भारतीय कला और परंपरा की जीवित मिसाल की है। यहां लगभग हर घर में कोई न कोई कलाकार है। कोई पत्तचित्र बनाता है, कोई ताड़ पत्र पर नक्काशी करता है, तो कोई लकड़ी और पत्थर से अद्भुत कलाकारी करता है। रघुराजपुर की सबसे प्रसिद्ध कला है पत्तचित्र। कपड़े या सूखे पत्तों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई गई ये पेंटिंग्स भगवान जगन्नाथ और भारतीय कथाओं को जीवंत कर देती है। और सबसे खास बात, यहाँ कला सिर्फ काम नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। बच्चे बचपन से ही रंगों और ब्रश के साथ बड़े होते हैं। यही गांव प्रसिद्ध ओडिशी नृत्य गुरु केलू चरण मोहापात्रा की जन्मभूमि भी है। यानी यहां सिर्फ चित्रकला ही नहीं, संगीत और नृत्य भी संस्कृति की तरह बहते हैं। रघुराजपुर की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक खुली आर्ट गैलरी हो। रंग बिरंगे घर, हाथों की महीन कारीगरी और हर चेहरे पर अपनी कला के लिए गर्व। आज जब दुनिया मशीनों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में रघुराजपुर हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता इंसानी हुनर और परंपरा में बसती है। तो दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा। और हाँ, कभी उड़ीसा जाएं तो इस अनोखे गांव की गलियों में जरूर घूमिए, क्योंकि यहाँ हर घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक कला मंदिर है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म थी आराधना। और अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की थाली के उस राज की जो स्वाद भी बढ़ाता है और सेहत भी, यानी दक्षिण भारत के फर्मेंटेड फूड का विज्ञान। साउथ इंडियन जो फूड होता है वो सिर्फ स्वाद के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि उसकी सेहतमंद परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पम और सांभर ये सिर्फ व्यंजन नहीं है बल्कि विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल इन व्यंजनों की खासियत ये है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, जब चावल और उड़द दाल को भिगोकर पीसा जाता है और कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, तो उसमें प्राकृतिक रूप से जो मौजूद अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। यही सूक्ष्म जीव उस घोल को हल्का, खट्टा और पौष्टिक बना देते हैं। तो फर्मेंटेशन की इस प्रक्रिया से खाने में प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं, यानी ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। और यही वजह है कि इडली और डोसा जैसे व्यंजन हल्के भी होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्मेंटेशन से भोजन में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे उड़द दाल और चावल में मौजूद जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं वो समूह फर्मेंटेशन के बाद और बेहतर तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत की बात कर रही है, लेकिन भारत की परंपरागत रसोई सदियों से इस विज्ञान को अपनाए हुए। हमारी दादी नानी की रसोई में मौजूद ये फर्मेंटेड भोजन आज के आधुनिक पोषण विज्ञान में भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगली बार जब आपकी थाली में गर्मा गर्म इडली या कुरकुरा डोसा आए तो याद रखिए ये सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि विज्ञान और सेहत का भी कमाल है।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले को, फिल्म थी तीसरी कसम। और दोस्तों, गर्मियों में बार बार प्यास लगना, शरीर में गर्मी और थकान महसूस होना, तो आज ट्राई कीजिए एक ऐसा देसी सुपर ड्रिंक, गोंद कतीरा शरबत। गोंद कतीरा शरीर को अंदर से ठंडक देता है, लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों की थकान दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये स्किन और डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये इंस्टेंट बॉडी कूलिंग ड्रिंक। तो सबसे पहले एक चम्मच गोंद कतीरा रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह तक ये फूल कर बिल्कुल जेली की तरह दिखने लगेगा। अब एक गिलास में डालें एक बड़ा चम्मच भीगे हुए सब्जा के सीड्स, 8-10 पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई मिश्री और 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसमें ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बस तैयार है आपका रिफ्रेशिंग गोंद कतीरा शरबत। तो इस गर्मी शरीर को रखें फ्रेश, हाइड्रेटेड, देसी अंदाज में। और हाँ, हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। गौरी शंकर वर्मा जी, सुदर्शन मुखी जी और नवीन भाटिया जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हम सुन रहे हैं हेमलता को फिल्म अखियों के झरोखों से। आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की

राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं, उन्हें याद करने वाले हैं जिनके जो ऑन स्क्रीन किरदार थे वो इतने ज्यादा असरदार रहे कि लोग उन्हें वही समझ बैठते थे जो किरदार वो पर्दे पर दिखाया करते थे। जी हाँ, एक ऐसे कलाकार जो चमके थे 50 और 60 के दशक में। तो कौन है वो, पहले उनका गाना सुनाती हूँ, आपको खुद भी अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो मिलकर सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज साथ में आपने सुनी कमल बरोध की आवाज। पारस मणि फिल्म का ये गाना है और पारस मणि में के इस गाने में जो नृत्य कर रही हैं दो सुंदर सुंदर कन्याएं, उनका नाम है जीवन कला और नलिनी। वैसे वो किसके सामने नाच रही हैं? उनके बिल्कुल सामने बैठे हैं महिपाल। 50 और 60 के दशक में जितनी भी धार्मिक फिल्में रिलीज हुआ करती थीं उनमें ज्यादातर में महिपाल ही नजर आते थे। वो उस दौर के सुपरस्टार थे, खासतौर से माइथोलॉजिकल फिल्मों के लिए उन्हें पहचान मिली। दोस्तों 24 नवंबर 1919 को जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। महिपाल को बचपन में महिपाल भंडारी के नाम से जाना जाता था और फिल्मों में वो सिर्फ महिपाल के नाम से मशहूर हुए। महिपाल को लिखने का बहुत शौक था और ये जो शौक है ये उन्हें विरासत में मिला। उनके बारे में आज बहुत सारी बातें सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना सुनहरी नागिन फिल्म से ये गाना, जो कि फिल्माया गया था हेलन और महिपाल पर। दोस्तों, आज अभिनेता महिपाल की हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। अभिनेता महिपाल के दादाजी एक जाने माने लेखक थे और कवि थे। उनका नाम था बजरंग चंद। कहते हैं कि महिपाल महज 6 साल के थे जब उनकी मां चल बसी। महिपाल का ज्यादातर वक्त अपने दादाजी के साथ गुजरता और उनके साथ महिपाल भी छोटी सी उम्र में ही कविताएं और गीत लिखने लगे। महिपाल एक कला प्रेमी थे, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आते, इतिहास की भी उन्हें गहरी समझ थी। कॉलेज के दिनों में महिपाल ने एक कविता लिखी थी, किसान उसका शीर्षक था। ये इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि लोग उन्हें इसी कविता को पढ़ने के लिए खास तौर से बुलाया करते। दोस्तों, इसी दौरान महिपाल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि महिपाल को बचपन में कुछ खास रुचि नहीं थी अभिनय में, लेकिन वक्त के साथ मिजाज भी तो बदल ही जाता है। और वक्त के साथ संगीत कितना ज्यादा बदल गया है, पसंद कितनी ज्यादा बदल गई है। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें हम हमेशा सुनना पसंद करते हैं, जैसे कि अल हिलाल की ये कव्वाली। कितने साल पुरानी है, अब भी अच्छी लगती है।

0: कितनी ज्यादा बुराई की है इन्होंने हुस्न वालों की। इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों की आवाज में आपने सुना इस कव्वाली को, और फिल्म का नाम था अल हिलाल। काफी दिनों बाद इस तरह का म्यूजिक मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1958 में फिल्म आई थी। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं अभिनेता महिपाल की। थिएटर में काम करते करते महिपाल को अभिनय से मोहब्बत हो गई। साल 1942 में उनका जो ख्वाब है अभिनेता बनने का, वो पूरा भी हुआ। किस तरह से आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं महिपाल के बारे में, किस तरह से एक्टर महिपाल कविताएं लिखा करते थे बचपन में, किस तरह से उनका जो बचपन है वो बीता। अब आगे की कहानी। साल 1942 में महिपाल का ख्वाब पूरा हुआ फिल्मों में काम करने का। उनकी जो पहली फिल्म थी वो एक मारवाड़ी फिल्म थी, और ये सिर्फ महिपाल की पहली फिल्म नहीं थी बल्कि मारवाड़ी सिनेमा की भी पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म चली नहीं, लेकिन महिपाल का जो अभिनय है वो सराहा गया। इसके तुरंत बाद उन्हें और फिल्में मिली और हिंदी सिनेमा का दरवाजा भी उनके लिए खुल गया। बहुत ही कम लोग जानते हैं दोस्तों कि महिपाल ने करियर के शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे, और ये मौका उन्हें मिला था वी शांताराम से।

0: आशा भोसले और कमल बरोद की आवाज में आपने सुना जंतर मंतर फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना। सरदार मलिक का संगीत था और महिपाल की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मानी जाती है जंतर मंतर। दोस्तों, महिपाल अपने जमाने के सुपरस्टार थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महिपाल को फिल्मों में काम करने की बात पर अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, महिपाल जब पहली बार फिल्म में काम करने के बाद वापस अपने घर जोधपुर पहुंचे तो उनके दादाजी के अलावा सब उनसे नाराज थे। सबका मानना था कि फिल्मों में काम करना अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जमाने में ऐसी सोच हुआ करती थी, लेकिन दादाजी महिपाल को बहुत चाहते थे तो उन्होंने सबको मना लिया और महिपाल को मुंबई में पूरी तरह से बस जाने की इजाजत भी मिल गई थी।
1: वो जब याद आए बहुत

या तो हमें भी आते हैं महिपाल, जिनकी इतनी खूबसूरत फिल्में रही हैं और इतने प्यारे प्यारे गाने रहे हैं उनकी फिल्मों में। ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। पारस मणि है फिल्म का नाम, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और महिपाल के साथ इस फिल्म में अभिनय किया गीतांजलि ने। दोस्तों, महिपाल के करियर की अगर बात करें तो ये एक नहीं बल्कि कई बार शुरू हुआ। पहली बार उन्होंने मारवाड़ी फिल्म में काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिला गीतकार के तौर पर और इसके बाद उन्हें मधुबाला के साथ भी एक फिल्म मिली। लेकिन इसके बावजूद भी करियर की रफ्तार आगे नहीं बढ़ी। लगभग 11 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं मिला और फिर 11 महीने बाद एक बार फिर से किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिल्म मेकर होमी वाडिया के दफ्तर से उन्हें कॉल आई। होमी अपनी आने वाली फिल्म में महिपाल को लेना चाहते थे। ये एक धार्मिक फिल्म थी जिसमें श्री गणेश के रोल के लिए महिपाल को बुलाया गया। महिपाल के अपोजिट अभिनेत्री थी मीना कुमारी। श्री गणेश महिमा नाम की ये जो फिल्म थी ये सुपरहिट रही और महिपाल के करियर का एक बार फिर से श्री गणेश हुआ, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो महिपाल को उनकी धार्मिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। ऐसी एक फिल्म थी कण कण में भगवान, इससे एक गाना है बड़ा ही प्यारा, सुनाती हूँ आपको।

0: आए कभी अपने।
1: महेंद्र कपूर की आवाज में कणकण में भगवान फिल्म का ये कितना खूबसूरत गाना है, एक एक शब्द बहुत ही प्यारा, बहुत ही सच्चा। ये गाना आपने सुना और मैं आपको बता दूं कि महिपाल की एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है कणकण में भगवान, उनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था इस फिल्म में। दोस्तों, महिपाल को सबसे बड़ी जो पहचान मिली वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के लिए ही मिली। इस कड़ी में संपूर्ण रामायण, वीर भीमसेन, वीर हनुमान और हनुमान पाताल विजय, जय संतोषी माँ जैसी हिट फिल्में हुआ करती थीं और महिपाल इन सभी फिल्मों में मुख्य अभिनेता बनकर नजर आए। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान विष्णु आदि के किरदार निभाए और इन भूमिकाओं को निभाने का एक बहुत ही गहरा असर रहा। जी हाँ, लोग उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान देने लगे थे और वो जहां पर भी जाते थे लोग उनके जयकारे लगाते और उनके पैर छूने लग जाते थे। उन्हें बहुत बहुत सम्मान मिला इन फिल्मों में काम करने के बाद। दोस्तों, फिल्मों में धार्मिक किरदार सबसे ज्यादा बार निभाने का जो रिकॉर्ड है वो भी महिपाल के ही नाम है।

0: लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के साथ कमल बरोध की आवाज में सती सावित्री फिल्म का ये गाना आपने सुना। दोस्तों, महिपाल ने पौराणिक फिल्मों के अलावा कई कामयाब एडवेंचर और स्टंट फिल्में भी की, जैसे कि अली बाबा और 40 चोर, अलादीन और जादुई चराग, रूपलेखा, पारस मणि, जबक और अरेबियन नाइट्स। ये कुछ फैंटेसी फिल्में थीं और इन फिल्मों के लिए बाकायदा घुड़सवारी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी महिपाल ने। वो अपने हर किरदार में बस खो ही जाते थे। दोस्तों, एक बहुत ही खास फिल्म का अब मैं आपको गाना सुनाने वाली हूं, जिसका जिक्र किए बिना आप महिपाल की जो कहानी है, उनके करियर की जो बातें हैं, वो इनकम्प्लीट मानेंगे। और ये फिल्म थी नवरंग। इसमें उन्होंने दिवाकर का किरदार निभाया था, जो बहुत बहुत पसंद किया गया था।
1: चंद्रमा

0: राधा।
1: तो दोस्तों, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में नवरंग फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज 40 से 60 के दशक के गाने, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के

राय खारजा की दो रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक फुसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए वी डी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त है। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोजा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अमन व सलामती आलमी निजाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और

0: governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीक़ेकार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दोतरफा और कसीर रुखी राब्तों के जरिए करीबी और मुसलसल राब्ते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नजरियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हम आहंगी के लिए एक प्लेटफार्म फराहम कर रही है। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जामे कलीदी भारत इंडोनेशिया साझेदारी और जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक की अंजुमन के साथ इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी कल अबूजहबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे, जिसके नतीजे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी को एक नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर बढ़ते हुए राब्तों के बाद वजीर आजम वहां के दौरे पर जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने इस साल जनवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और गुज़िश्ता 10 साल में ये उनका भारत का पांचवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से तीसरा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मीटिंग के दौरान कलीदी जामे नौयत की साझेदारी का तफसीली जायजा लिया और कई अहम समझौतों का तबादला किया। इनमें से सबसे ज्यादा अहम कलीदी दिफाई शराकतदारी के लिए काम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाना भी शामिल है, जो कि दोनों मुल्कों के बाहमी सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। कांग्रेस के असेंबली मेंबर वीडी सतीशन केरलम के नए वजीर आला होंगे। कांग्रेस लीडर दीपा दास मुंशी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने अपने 20 साल के मुख्तसर कयाम में ही मुल्क के 140 करोड़ आवाम का एतमाद जीत लिया है। वजीर दाखला ने यह भी कहा कि आफात से निमटने के सिलसिले में भारत एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और ये दुनिया में इस तरह का कदम उठाने वाला सबसे पहला मुल्क है। वजीर दाखला ने यह बात गाजियाबाद में एनडीआरएफ को सदर का परचम दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई आफत आती है या आने वाली होती है तो एनडीआरएफ के अमले के वहां पहुंचने के बाद लोग राहत का सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फोर्स को सदर का परचम मिलना निहायत फख्र की बात है। जनाब अमित शाह ने कहा कि सदर जमहूरिया ने साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ पंचायत रियासती इंतजामिया एनसीसी एनएसएस और हजारों आपदा मित्रों की खिदमत को भी सराहा।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार टेक्नोलॉजी

0: Among the prominent executives accompanying the president are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7-seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि

0: से चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
5: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में

0: कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात और मैं हूं आपके सामने नीरा, और मेरे साथ हैं आज
2: अमित तेवतिया
1: जी, और लेकर हाजिर हैं अमित एक और अच्छा सा प्यारा सा विषय जो कि समसामयिक तो होता ही है और साथ ही साथ इस पर ढेर सारी जानकारी भी होगी।
2: बिल्कुल नीरा, आपने सही कहा भाई, कार्यक्रम का विषय ऐसा कि जिससे आज हम देखें कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं, तो जो वाणिज्यिक फसलों की बात करते हैं या बागवानी की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आम के जो बाग हैं वो आम की फसल से लदे खड़े हैं। लेकिन मौसम जो एक ऐसा चिंता का विषय कभी कभी हमारे किसान भाई बहनों के लिए हो जाता है, हमारे जो बागवान हैं उनके लिए हो जाता है कि कहीं ये हमारी जो फसल है उसको कितना नुकसान कर सकता है, इस पर वैज्ञानिक सोच क्या है, क्या अनुसंधान है, किस प्रकार से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल अमित, और इसी के लिए जब हम कहते हैं कि जागरूकता बहुत आवश्यक है, किसान जागरूक होगा तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो बड़ी आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। अगर आप जागरूक हैं तो आप समय रहते ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी फसल का जो नुकसान है वो बहुत कम होगा। लेकिन एक बात और है अमित, जहां हम आम के बागों की बात करते हैं, आम की फसल की बात करते हैं, तो वहीं जब आंधी तूफान का जिक्र आता तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि कैसे इससे बाहर आएंगे।
2: यानी कि आपने विषय की सही कह सकते हैं कि शीर्षक हो गया है कि आम की फसल में बाहर और उसका उपचार।
1: बिल्कुल,
2: भाई बाहर ये है कि फल हमारे लदे खड़े हैं, अच्छी फसल है, किसान खुश है, जो भाई जिन्होंने बाग ले रखे हैं वो भी, हमारे जो मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन वहीं फिर आपने कहा कि जो आंधी है, ऐसा चक्रवात है, मौसम है, या ओलावृष्टि है या वर्षा है जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है, ऐसे कारकों के विषय में हमें पहले से ही जानना होगा और जिसके लिए जागरूकता बड़ी जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है सुनना कार्यक्रम किसान की बात।
1: बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलती है पूर्ण जानकारी। विषय कोई भी हो, एक्सपर्ट आपको एक्सप्लेन करके एक एक बात ऐसे समझाते हैं कि जैसे आप और वो एकदम समक्ष बैठे हुए हों। और उपचार की बात होती है अमित, तो उपचार जब हम आम की बात करते हैं, जब फूल लगते हैं आम में, एकदम वो गुच्छे से जो होते हैं, और उनमें साथ ही साथ कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को भी आमंत्रण वो देते हैं, तो बस इन्हीं सब चीजों पर जानकारी होगी, बात होगी और चलते हैं आगे की ओर।
2: कार्यक्रम किसान की बात में आम की फसल में बाहर उपचार विषय पर आपको एक ऐसी बातचीत हम सुनवाने जा रहे हैं जिसका निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। हम कोशिश करेंगे कि भाई इस फसल को हम कैसे बचाकर रख सकते हैं और कम से कम कोशिश करेंगे कि जो नुकसान हो वो किसान का कम से कम हो, लागत कम से कम आए, उत्पादन अच्छा बना रहे। लेकिन इसके लिए जो वैज्ञानिक सोच है, जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुसंधान करता है, जो आकाशवाणी के माध्यम से अन्य सभी माध्यमों से आप तक बात पहुंचाते हैं, कि उनकी बात को मानना और खेतों में फिर उन्हें लागू करना।
1: बिल्कुल, और आज इस पर जानकारी देने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर मुकेश शिवरन। तो जो है कैसे, क्या और क्या, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि क्या करना है ये भी आवश्यक है और क्या नहीं करना है ये भी आवश्यक है, तो क्या करें और क्या ना करें, ये सब बातें, ये सब जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं
2: डॉक्टर मुकेश शिवरन।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को और साथी किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आरती, और आज हम बात करेंगे आम की फसल में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आती हैं, बाहर पर नियंत्रण किस तरह से आप कर सकते हैं, और ढेर सारी बातें आम की फसल से जुड़ी हुई। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश शिवरान जी, जो विषय विशेषज्ञ हैं बागवानी, IHDC महेंद्रगढ़ हरियाणा से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद मैडम।
3: तो साथियों, आम जैसा रसीला फल आप सभी खाते हैं और इसका जो इंतजार इस गर्मी के मौसम में हम सभी को रहता है, लेकिन जो हमारे किसान मित्र हैं वो बागवानी जब करते हैं और खासतौर पे आम की फसल की, तो उनको भी इंतजार रहता है कि किस तरह से वो नए बाग जो है वो तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पुराने बाग पहले से ही तैयार है उनकी किस तरह से देखरेख कर सकते हैं। तो यही बातें आज करने वाले हम कार्यक्रम में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना हम चाहते हैं कि आम में अभी अगर देखें तो करंट स्थिति क्या बनी हुई है, ये अभी क्या देखने को मिल रहा है, मतलब फल लगे हुए हैं या नए बाग तैयार करने की स्थिति बनी हुई है।
4: आम में मुख्यतः क्या है कि आम लगने का जो पीरियड है वो अंतराल लंबा है
3: जी।
4: तो साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया में अलग अलग सिचुएशन होता है। तो अभी जैसे साउथ इंडिया के अंदर जो वेराइटीज है वो पहले पक जाती है, लेकिन जो अपना नॉर्थ इंडिया है वहां पे जो वेराइटीज है वो लगभग जून माह से पकना स्टार्ट होगी। तो जो अभी है वहाँ फल का विकास हो रहा है और कुछ किस्में हैं जिनके अंदर फ्रूट मैच्योर हो चुका है।
3: तो अगर हम बात करते हैं, अगर ये तो आपने कहा जो अभी पेड़ तैयार है उनमें क्या स्थिति है, लेकिन एक समय आता है जब अगर कोई हमारे किसान मित्र इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं और नए बाग लगाना चाहते हैं, तो वो कौन सा समय होता है?
4: देखियो किसान भाइयों, सबसे पहले क्या है कि जो बाग लगाने का उचित जो समय होता है वो मानसून के समय होता है, जब बारिश आती है अपनी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। डायरेक्ट उस समय अपन बाग लगाने के लिए पहले जो आवश्यकता होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी अपन बाग लगाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले मिट्टी और पानी की जांच करवाना आवश्यक होता है। तो मिट्टी और पानी की जांच हम कहां से करवाए, तो उसके लिए अपने क्षेत्र है उसके पास में कृषि विज्ञान केंद्र या कोई भी कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से अपन जांच करा सकते हैं मिट्टी की। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि गड्ढे खोदना, तो गड्ढे हमेशा मई के माह में खोद लेने चाहिए, क्योंकि जब इस समय गड्ढे खोदेंगे तो उसके लिए क्या है कि अच्छी धूप लगेगी, उसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मई माह और जून माह दो महीने के अंदर अच्छे से धूप लग जाती है, जिसकी वजह से जो हानिकारक कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए आगे जो फसल की जो बढ़वार है उसके अंदर बीमारियां नहीं आती है।
3: जी, गड्ढे खोदना आपने कहा डॉक्टर साहब, तो ये लगभग कितनी गहराई में होने चाहिए, कितनी दूरियों पे होने चाहिए, इसके विषय में भी बताएं।
4: तो इसके अंदर ऐसे है कि जो आम है उसकी अलग अलग वैरायटीज आती है। जो हमारा पर्पज है जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के हिसाब से लगाना है या ज्यादा दूरी के हिसाब से लगाना है, तो कुछ वेराइटीज है जैसे आम्रपाली है, उसको अपन पास पास में लगाते हैं जैसे 2.5 मीटर के हिसाब से, लेकिन बहुत सी किस्में हैं जिनको हम 6x6 पे और 10x10 पे भी लगाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आजकल की जो किस्में आ रही है ट्रेन में उनमें मुख्यतः 6x6 मीटर पे लगाते हैं। तो इसके लिए जो हम गड्ढे खोदते हैं वो लगभग 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा खोदते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है साथ ही, जब गड्ढा खोदे तो कोई भी स्थान हो वहां से अपन एक गहरा गड्ढा खोदे लगभग 2 मीटर के आसपास का, वो जहां अपन बाग लगाना चाहते हैं वहां पे, ताकि अपने को पता लग सके कि यहां पे कोई जो कठोर परत तो नहीं है या कोई चट्टान तो नहीं है, क्योंकि बाद में

0: जब बाग बड़ा होता है तो जो आम का पेड़ है वो बड़ा होता है, इसकी वजह से क्या है कि जो जड़ें हैं वो गहरी जाती है। तो उस समस्या को रोकने के लिए अपने को ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर जो कठोर परत या चट्टान तो नहीं है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसके अलावा एक मुख्य बात जो आम में आती है कि जो आम का बाग है उसके अंदर 2 किलोमीटर के आसपास कोई भी ईंट के भट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईंट के भट्ठे से क्या है जहरीली गैसें निकलती है, उसकी वजह से आम के अंदर एक समस्या आती है जिसको हम ब्लैक टिप बोलते हैं। तो ये किसान भाइयों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर आसपास में ईंटों के भट्टे हैं तो वहाँ आम का बाग लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब जैसे बातें तो हमें बहुत करनी है कि आम की फसल में समस्याएं कौन सी आती है, बाहर नियंत्रण, लेकिन अब बात छिड़ी है कि हम किस तरह से नर्सरी तैयार कर रहे, तो अगला स्टेप अगर हमने गड्ढे खोद लिए हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए, किसान मित्रों को किस तरफ बढ़ना चाहिए, उस गड्ढों को खोदने के बाद कितने समय के लिए छोड़ना चाहिए?
0: जैसे गड्ढे खोद दिए, मई माह है ये उचित समय है, इसके बाद में लगभग 1 से 1.5 महीना आराम से गड्ढे को खुला छोड़े। उसके बाद अपने को तैयारी करनी होती है जिसके अंदर कुछ पौधे लेने की, तो हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले किस्मों का चुनाव करना है। तो जो किसान भाई है इस वेराइटी को लगाने का पर्पज क्या है, हमें इसको निर्यात करना है, हमें इसको प्रोसेसिंग करना है, हमें इसको खाने के लिए काम में लेना है, या हमें अचार वगैरह बनाने के लिए काम में लेना है, तो सबसे पहले वेराइटी का चुनाव होना चाहिए। तो मुख्यतः जो किसान लगाना चाहे तो मैं कुछ में बताना चाहूंगा जिसके अंदर आप अलग अलग चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम निर्यात के पर्पज से लगाना चाहे तो निर्यात के पर्पज के लिए एक चीज आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ, मतलब जो फल पक गया उसके बाद कितने दिन तक वो खराब ना हो। तो कुछ किस्में ऐसी है, तो जो अपना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा कुछ वेराइटियां निकाली हुई है जिसके अंदर पूसा अरुणिमा है, तो ये वेराइटी है इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लगभग 12 दिन के आसपास है। ऐसे ही एक पूसा सूर्या वेराइटी है, उसकी 10 से 12 दिन की सेल्फ लाइफ है, तो ये अगर निर्यात के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जो पूसा अरुणिमा है उसका जो पील है, बाहर का जो छिलका है वो कलरफुल है, तो ये एक अट्रेक्टिव है जो की इंटरनेशनल मार्केट है अपना, उसके अंदर उसकी वैल्यू अच्छी रहती है। उसके अलावा जो अपन खाने के लिए काम में लेते हैं, तो आम के अंदर जैसे अर्ली वेराइटीज होती है, मिड होती है, लेट होती है, तो बहुत सारी किस्में हैं जो जल्दी आ जाती है फिर बाद में मिल, ताकि किसान को लंबे समय तक उसकी जो आमदनी है वो प्राप्त हो सके।
1: एक ही बाग में क्या 2-3 तरह की किस्में लगाई जा सकती हैं?
0: हाँ, जैसे बहुत सारी किस्में, जैसे दशहरी है, दशहरी जल्दी आ जाता है, थोड़ा मिड के अंदर आ जाता है, फिर आम्रपाली आता है, फिर जो पूसा अरुणिमा है अपना वो बहुत लेट आता है, वो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आता है। तो इस हिसाब से किसान अपनी अपनी अलग अलग लाइनें लगा सकता है।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आम का बाग लगाने का हमने उचित समय की बात की कि अब कर सकते हैं, और सावधानी की अगर हम बात करते हैं कि काटने का ईंट का भट्टा नहीं पास में होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए हमारे किसानों को?
0: किसानों को सबसे पहले मैंने बताया था, आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पानी की और मिट्टी की जांच है ना, उसमें यह है कि जो आम है वो जो लवणीय जो अपनी मृदा है और पानी है उसके अंदर नहीं होता है। अगर ऐसा करते हैं मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर अगर लवणीयता ज्यादा है तो आम के अंदर क्या होता है, ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि जो इसकी जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्या है कि आपकी जो किनारे होते हैं वहां से वो जल जाते हैं, तो उस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना है, जो अपन पौधे लाते हैं, अपन क्या करते हैं जो नर्सरी से हैं वो पौधे लाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, एक तो NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उससे अप्रूव्ड नर्सरी हो, या कोई भी सरकारी जो संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट है, वहां से लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कुछ मैं बता रहा हूं आपको, एक मूलवरंत होता है, क्योंकि जो आम है उसका जो अपन नर्सरी करते हैं तो उसके अंदर एक तो होता है रूट स्टॉक जिसको हम मूलवरंत बोलते हैं, एक होता है सायन जिससे अपन उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, तो जो कुछ रूट स्टॉक ऐसे हैं जो कुछ क्षमता तक जो लवणीय मृदा है उनके अंदर हो सकते हैं। तो कुछ रूट स्टॉक जैसे हैं क्रुक्कन है, ओल्लूर है, पूसा आम मूलवरंत 1 है 2 है, तो इनके ऊपर अगर अपन किसी किस्म को ग्राफ्ट करते हैं तो उससे इसकी जो समस्या है जो लवणीयता की उससे निजात पा सकते हैं। और 2-3 चीजें याद रखनी है कि अपन किसान भाई बाग लगाता है तो थोड़ा सड़क के आसपास लगाने, ताकि उसको जो सेल करने में हो वो आसानी हो, और जो आसपास के लोग हैं वो उनको पता रहे कि यहाँ बाग है तो उसको बेचने में आसानी रहे।
1: मार्केटिंग का भी एक
0: इश्यू है, तो वो सोल्व हो सकता
1: जी।
0: है।
1: और जब नए बाग की हम तैयारी करते हैं या फिर पुराने भी बाग कहे तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या इंटरक्रॉपिंग का जो बात होती है, अंतर जो हम फसलें लगाते हैं, तो उसका क्या रोल अदा होता है?
0: देखिए, जो सबसे पहले है जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जो बीच में अपन जो स्थान है उसको काम में लेते हैं, क्योंकि जो आम है और अन्य जो बागवानी जो फसलें हैं जो फलों की, उनके अंदर क्या है कि शुरू के अंदर पहले साल में ही फल नहीं आते
1: जी, बिल्कुल।
0: तो जो

0: अपन ग्राफ्टेड वाले पौधे लगाते हैं, उनके अंदर लगभग 3 साल के बाद ही फल आना स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर जो बीच का जो स्पेस है, उस तब तक किसान अपनी एक्स्ट्रा इनकम ले सके, उसके लिए इंटरक्रॉप कर सकते हैं, यानी कि बीच में फसल लगा सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फसलें होती हैं जिनको लगा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी मान लो कुछ फसलें हैं जिनमें कीड़े मकोड़े आते हैं, जो कि अपनी मुख्य फसल को खराब कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, कुछ तो अपन जो लेग्यूम फसलें होते हैं, जो दलहनी फसलें होते हैं, उनको भी बीच में लगाना चाहिए, ताकि जो इनके अंदर जो नाइट्रोजन क्षमता है प्रदान करने की, तो वो दलहनी फसलें दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे यूपी जैसे क्षेत्र के अंदर अपन हल्दी लगा सकते हैं, एक हल्दी मुख्य फसल है। उसका कारण ये है कि जो हल्दी है, जैसे बाग बड़ा हो गया उसके बाद भी अपन इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो वो क्या है कि जो हल्दी है वो छाया वाली फसल है, तो जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद धूप की आवश्यकता नहीं होती ज्यादा, तो इसलिए उसको लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए साथ साथ ये है कि उसके लिए जैसे एक तो मैंने बोला कि छाया की जरूरत होती है, दूसरी जो अपनी ब्लुई दोमट मृदा होती है, जो कि अपन आम के लिए भी उपयुक्त रहती है, वो ही हल्दी के लिए भी उपयुक्त रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हल्दी मई जून का समय आता है, उस टाइम पे अपन हल्दी लगा सकते हैं। तो लगभग इसके अंदर क्या है कि जो 15 क्विंटल के आसपास अपने को उसके राइजोम लेने हैं, और उनको ट्रीट करके 0.3% मेनकोजेब से ट्रीट करके उसको छाया में अच्छे से सुखा के अपन उसकी बुवाई कर सकते हैं। वो निरंतर उसको निराई गुड़ाई करके पानी देना, पोषक तत्व देके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 15 टन के आसपास अपन इसमें बाग के साथ साथ जो हल्दी है उससे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, एक जो शुरुआत में हमने बात की थी कि बाहर नियंत्रण की हम बात करने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा आप समझाएं कि बाहर नियंत्रण है क्या और इसको किस तरह से करना है।
0: बाहर का मुख्य जो फूलों के बारे में बताया गया है, तो आम में है जिसे फूल आते हैं, लेकिन जो फूल सेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
1: अच्छा।
0: और आम में एक मुख्य समस्या जो कुछ किस्में हैं, जैसे दशहरी है और आपका चौसा है, लंगड़ा है, इनमें एक समस्या और आती है जिसको हम एकांतर फलन की समस्या बोलते हैं। एकांतर फलन की समस्या का मतलब ये होता है कि जो अपना बाग है वो एक साल फल देगा और अगले साल या तो बहुत कम देगा या नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इनको जो संतुलित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, जो फूल है उनको नियंत्रित करें। तो इसके अंदर क्या है, एक पेक्लाबुट्राजोल नामक जो केमिकल आता है उसका उपयोग करके हम जो ये समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, और जो ये फूल है उसको रेगुलर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये करना है कि जो 3.5 ml जो पेक्लाबुट्राजोल है वो प्रति मीटर कैनोपी डायमीटर जो उसका एरिया है उसके हिसाब से मिट्टी में डालना है। तो ये कब डालना है, ये अपने को डालना है लगभग सितंबर लास्ट और अक्टूबर शुरू के अंदर। इसके अलावा जैसे फूलों को अगर सही संतुलित करना है और बढ़वार करना है, तो पोटेशियम जिसे को KMnO3 बोलते हैं, 1% उसके हिसाब से देके अपन फूलों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे किसान बिना इनके भी कर सकता है फूलों को बढ़ाने के लिए। हमेशा क्या है कि जो ड्रॉट है सूखा देके कुछ दिन वो पानी रोक के, तो फिर उसके अंदर जो कुछ जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनसे फ्लावरिंग में जो फूल आते हैं उनमें मदद मिलती है। और उसके बाद जैसे फूल आते हैं उसके बाद हल्की सिंचाई देनी चाहिए, हमेशा भारी सिंचाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसकी वजह से फूल झड़ सकते हैं, इसलिए हल्की सिंचाई देना चाहिए उसके बाद।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, या बाग की बात करें, कि एक साल फल देते हैं, एक साल कम या नहीं देते हैं, तो ये समस्या क्या शुरुआत में इसका समाधान किया जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके?
0: इसके लिए है कि बहुत सारी अल्टरनेट वेराइटीज है, दूसरी वेराइटी है, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, ये रेगुलर वेराइटी है, हर साल एक तरह से फल देती है, इनमें ये समस्याएं नहीं है।
1: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज और है कि जैसे फूल झड़ जाते हैं, या फिर कहें जो आम के फल हैं वो गिरने की समस्या बहुत हमारे किसानों को सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, जो फूल झड़ते हैं और फल झड़ते हैं उनकी समस्या कोई भी एक फैक्टर नहीं है
1: जी,
0: उसके अन्य बहुत सारे कारण हैं, जैसे तापमान में, ये इस समय जो अपना नॉर्थ इंडिया है उस टाइम बारिश नहीं होती, लेकिन इस साल जैसे बारिश हो रही है, पिछले साल भी हुई थी, तो जो टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, कभी कम बारिश के टाइम कम हो गया, अब जैसे बारिश नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा 40 के ऊपर चला जाएगा, और अभी 25 के नीचे आ जाए, तो वो जो अंतराल है उसकी वजह से फल और फूल दोनों झड़ते हैं। उसके अलावा जैसे पोषक तत्व होते हैं उनकी वजह से भी फूल झड़ जाते हैं, पोषक तत्व की कमी रहती है। तो इसके लिए क्या है, जब शुरुआती जो इनका जो फूल आते हैं उनसे लगभग 2 महीने पहले अपने को जो स्प्रे है, जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, उनको भी स्प्रे करना चाहिए, जैसे जिंक है, बोरोन है, इनका स्प्रे करना चाहिए निश्चित रूप से। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक समस्या होती है कि जो फूल होता है उसके बाद जो फल बनता है तो उसके अंदर एक परागण की आवश्यकता होती है, तो जो मौसम हो गया और कुछ बीमारी

0: हो गई, जैसे फूल आता है उस टाइम एक पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है बीमारी फंगस से लगती है वो आ जाती है। तो वो क्यों आती है, जैसे वो उसका भी मौसम की वजह से ही है। अगर जो अपने आर्द्रता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, बारिश का मौसम हो जाता है, तो उस अंतराल क्या है कि जो फंगस है वो बहुत ग्रोथ करता है
1: जी।
0: उसकी वजह से वो फूलों पर अटैक कर देता है, जिस कारण फूल है वो झड़ जाते हैं। उसके अलावा जैसे पोलिनेशन बोलते हैं, परागण प्रक्रिया है, अगर मौसम की और तापमान अधिक होता है, अनुकूलित नहीं होता है, तो परागण होता है, जैसे इसमें मक्खियों के द्वारा होता है। मक्खियां जो एक दूसरे को परागण करती है, एक फूल से दूसरे फूल पे, एक पेड़ से दूसरे, तो वो भी रुक जाते हैं। उसकी वजह से सही से फूल से फल नहीं बन पाता, उस कारण भी ये झड़ जाते हैं। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको ऑक्सिन्स बोलते हैं, उसकी जो कमी आ जाती है उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। तो किसान भाइयों को पहले ध्यान रखना चाहिए कि जिस टाइम फूल आते हैं उस टाइम नहीं, जो ये समस्या आती है वो पहले से रहती है। तो जैसे अक्टूबर के माह में इस टाइम पे कुछ जो मैंने पोषक तत्व बताए, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका स्प्रे करें, और लगभग 20 ppm जो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सिन होता है, उसका स्प्रे करें, तो उनसे निजात पाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिनके बाग अभी लगे हुए हैं उनको किन चीजों का मुख्य रूप से अभी ध्यान देना चाहिए कि उनके जो बाग है उनसे जो फल है वो उनको भलीभांति बहुत अच्छे से मिल जाए?
0: देखो, इस समय जैसे फल लगते हैं तो मुख्य समस्याएं 2-3 आती है। जैसे तो एक तो आती है फल मक्खी की समस्या, उसका कारण है कि जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश आती है उस टाइम पे ये एक्टिव रहती है, तो ये क्या करते हैं, अंडे देती है। तो इससे क्या करना चाहिए, अपने को पहले ही ध्यान रखना चाहिए, या तो उनको कवर कर देना चाहिए, पॉलीबैग्स आते हैं उनसे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स का मतलब ये है कि जो मक्खी होती है उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, तो उसके अंदर क्या है कि फेरोमोन ट्रैप में एक मिथाइल यूजेनॉल नाम का एक केमिकल आता है, जो क्या करता है, जो नर मक्खी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो सारे के सारे उस ट्रैप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे आगे प्रजनन की क्रिया नहीं बढ़ती है। तो इस समय ध्यान रखना चाहिए कि इस समय से भी पहले किसान लगाना चाहता है, जैसे फल सेट होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, उसी टाइम पे पहले ही अपने आप को क्या करते हैं कि ट्रैप लगा देनी चाहिए या बैगिंग कर देनी चाहिए, उससे क्या है जो फल है वो नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी किसी की भी बाग में मान लो अगर मक्खी आ गई और अटैक कर भी गया, तो वो जो फल है उनको इकट्ठा करके एक जगह गड्ढे में दबा के उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वो अगली पीढ़ी के अंदर नहीं जाए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने आम की फसल को लेकर दी, उम्मीद है हमारे किसान मित्र इसे सुन भी रहे होंगे और इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ भी उठाएंगे। और सभी किसान मित्रों को यही कहना चाहते हो कि आपकी आम की फसल जो है उसका आप बहुत ध्यान रखें, ताकि हम तक आपके रसीले फल जो है पहुंचते रहे बहुत अच्छे से। आप अपना भी ध्यान रखिए। इसी उम्मीद के साथ आरती आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।
2: तो मित्रों, अभी हम बातचीत सुन रहे थे, डॉक्टर मुकेश सिवरन से बातचीत कर रही थी आरती, जो हमारी रेडियो सहयोगी हैं, रेडियो मित्र हैं, और इतनी अच्छी जानकारी कि आम की फसल में अधिकतम उत्पादन हम कैसे लें, उसमें होने वाली चाहे बीमारियां हैं, कोई रोग है, किस पे उन पे हम जो नियंत्रण है वो कैसे कर सकते हैं, ये सब डॉक्टर साहब ने बताया। और एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें वैज्ञानिकों की सोच का निश्चित रूप से अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अधिकतम लाभ ले सकें।
3: बिल्कुल, और प्रोग्राम में इसी तरह और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन यहां रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे,
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।

0: कहीं एक विषय बड़ी गंभीरता से लिया जाता है कि अनुसंधान होते रहें, हमारे किसान खुशहाल हों, और खुशहाली से सीधा अर्थ होता है कि हमारे किसान की आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ने के लिए नीरा, जो हम कहते हैं कि भाई आपको नई नई वैरायटीज का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे जो आधुनिक युग में आधुनिक सोच के साथ कृषि करना चाहिए, लेकिन वहीं एक कोशिश होती है, किसान बहुत खुश होता है जब उसकी फसल के भाव में वृद्धि होती है और उसको भाव अधिक मिलता है।
1: बिल्कुल, अधिक मिलता है। और अमित, सबसे बड़ी बात है कि हम अक्सर ऐसी यही बात करते हैं कि कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक मुनाफा हो,
0: तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे किसान भाई तो अपडेट रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य अखबार के माध्यम से तो मिलती रहती है, लेकिन कार्यक्रम किसान की बात, यहाँ किसान की खुशहाली, खेतों के खिलखिलाने, खलियानों के मुस्कुराने की बात करता है, तो हम भी साझा कर रहे हैं कि जो कैबिनेट ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, उसको मंजूरी मिल गई है। तो किसान भाइयों, वृद्धि हुई कैसे है ये आपको बताते हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं उनमें जो धान सबसे प्रमुखता से लिया जाता है, तो धान को हम सामान्य और ग्रेड ए दो भागों में रखते हैं, जिसमें सरकार ने सामान्य धान की यदि हम बात करें तो जहां यह पिछले खरीफ मूल्य में 2369 रुपया प्रति क्विंटल था, तो इसमें 72 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इस बार 2441 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। और वहीं ग्रेड ए में भी 72 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल में, जो 2389 रुपया प्रति क्विंटल से 2461 रुपया प्रति क्विंटल 2026-27 के लिए एमएसपी आया है।
1: और अमित, वहीं अगर हम बात करते हैं पीली सोयाबीन की, तो इसमें भी वृद्धि हुई है 380 रुपए की। जहां पिछले वर्ष इसकी कीमत थी 5328, वहीं 380 की वृद्धि के बाद ये हो गई है 5708। और तिल की बात अगर करें तो 500 की यहां भी वृद्धि हुई है, और ये पहले अगर हम बात करते हैं 2025-26 की, तो इसका मूल्य था 9846, जो कि अब बढ़ गया है, 500 रुपए की वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ अगर हम कपास की बात करते हैं तो इसमें मध्यम रेशा और लंबा रेशा दोनों की बात हुई है, और दोनों के ही मूल्यों में वृद्धि हुई है। पहले 2025-26 में इसका मूल्य था 7710 रुपए, और जो कि अब जो बढ़कर 8266 रुपए हो चुका है। और वहीं अगर हम लंबे रेशे की बात करते हैं तो इसका मूल्य हो चुका है 8666 रुपए, जबकि ये पहले था 8110।
0: यानी कि कहीं ना कहीं सरकार पूरा ध्यान देती है कि हमारे किसान भाई बहन केवल अपना उत्पादन तो बढ़ाएं, लेकिन वहीं उत्पादन के साथ साथ उनका ध्यान रखती है, कोशिश करती है कि समय समय पर, चाहे रबी की फसलें हों, खरीफ की फसलें हों, उनके लिए जो है एमएसपी आता है। तो भी जो हमारे ऐसे किसान हैं कि जो बाजरे बोते हैं या बाजरे की खेती करते हैं, तो उनके लिए अगर तुलनात्मक बात की जाए तो 2025-26 में जहां बाजरे का भाव 2775 रुपया प्रति क्विंटल था, तो इसमें 125 रुपये की वृद्धि प्रति क्विंटल करके इसको 2900 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। नीरा, बहुत सारे किसान भाई बहने, जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसके भाव पे ध्यान रहता है कि भाई मोटा अनाज हम बो रहे हैं तो सरकार इसमें कितना वृद्धि करेगी, कितने भाव में हम इसको बेच सकते हैं। तो रागी की यदि बात करें तो जो पिछले वर्ष की तुलना में पिछले 319 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी कि 4886 रुपया प्रति क्विंटल रहा था, जो कि अब 5205 कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और अमित, जहां हम ये शब्द बार बार सुनते हैं ना कि वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, चाहे कहते हैं कि एक रुपया ही क्यों ना बढ़ा हो, लेकिन जब वृद्धि की बात करते हैं तो अपने आप में खुशहाली जो है वो अपने आप ही घर कर जाती है।
0: ये उत्साहवर्धन है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई भी कोशिश करते हैं और मांग भी करते हैं कि हमारी फसलों का भाव बढ़ना चाहिए, भाई महंगाई भी बढ़ रही है, तो सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। मक्का की यदि हम बात करें तो जो पिछले वर्ष 2400 रुपया प्रति क्विंटल था, 10 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इसको 2410 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है सूरजमुखी के बीज के भाव में, जो 7721 रुपया प्रति क्विंटल 2025-26 में रहा, जिसमें 622 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई, और अब 8343 रुपया प्रति क्विंटल इसका भाव विपणन सीजन 2026-27 के लिए कर दिया गया है। मित्रों, बात करें यदि मूंगफली के भाव की, तो 7263 रुपए में और 254 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इसका भाव 7570 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। उड़द का भाव, जहां पिछले वर्ष 7800 रुपया प्रति क्विंटल था, इसमें 400 रुपए की वृद्धि हुई है, जो अब 8200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और खासतौर से दलहन की ओर यदि नजर करते हैं तो अरहर का भाव जहां 8000 रुपया प्रति क्विंटल था, जो उसमें 450 रुपए की सीधे सीधे वृद्धि हमारे किसान भाई बहनों को मिलेगी विपणन सीजन 2026-27 के लिए, तो अब ये हो गया है 8450 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग में भी देखते हैं, 8768 रुपया प्रति क्विंटल था विपणन जो हमारा 25-26 के लिए था, लेकिन

0: बात करते हैं इस सीजन के लिए, तो इसमें 12 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 8,780 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है।
1: इस कार्यक्रम

0: कार्यक्रम किसान की बात में हम मित्रों कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी खुशी उनके चेहरे पर छोड़ के जाएं कि जो आज जैसी रही है कि 2026-27 के आपने विपणन सीजन के भाग सुने हैं, तो इसमें खेत खलियान खिलखिलाते रहें, किसान भाई खुश रहें और वैज्ञानिक सोच के साथ कृषि करते रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं मैं और नीरा। दीजिएगा अनुमति कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति तथा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Election Commission today announced Special Intensive Division SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. India has asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS Foreign Ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
4: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
3: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al Marar and Ronald Lamola from South Africa, among others. India and the UAE are set to take their already robust partnership to the next level as Prime Minister Narendra Modi meets UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi tomorrow. The visit comes amid growing high-level engagement between the two countries. The UAE President had visited New Delhi in January this year, his fifth visit to India in the past decade and the third as President of the UAE. During their meeting earlier this year, the two leaders had reviewed the full scope of their comprehensive strategic partnership and witnessed the exchange of several significant agreements. Among the most consequential was a letter of intent to work towards a formal strategic defence partnership, marking a major step forward in bilateral security ties. India has called the attack on an Indian-flagged ship off the coast of Oman yesterday as unacceptable. In a statement, spokesperson of the External Affairs Ministry, Randhir Jaiswal, deplored the fact that commercial shipping and civilian mariners continue to be targeted. He informed that all Indian crew on board are safe and thanked the Omani authorities for rescuing them. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheeshan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Vasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. UDF secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections, but the party was unable to decide its chief ministerial face due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. And with that, we end this news bulletin.

0: जिंदगी उस बेहतरीन किताब की तरह है जिसमें कई खूबसूरत पन्ने हैं और उस किताब को पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, कहीं खुशी होती है और कहीं तकलीफों से भरा सफर और कहीं कुछ इतना अच्छा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी को खुश होकर बिताना चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और हम सबको पता है कि हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम वर्ष, आकाशवाणी के संग यादों के रंग। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका एक अनोखा रिश्ता रहा है रेडियो से। करीब 40-45 साल का जो वक्त है मैम ने रेडियो को दिया, और मैं आपका तारुफ करवा दूं कि मैम हमारे साथ हैं ललिता चतुर्वेदी मैम हैं, जो कि पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका और वक्ता। मैम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद नसरीन
0: जी। मैम, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा जो वक्त आपने रेडियो के साथ गुजारा है वो कैसा रहा और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: सबसे पहले तो मैं सभी एफएम गोल्ड के श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
0: जी,
1: और एक शेर सुनाना चाहती हूँ। फिर नजर में फूल महके
0: जी,
1: दिल में फिर शम्माएं जली, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज्म में आने का नाम।
0: बहुत खूब।
1: और इस बज्म में आके किसको बुरा लगता है, जहां आपके जीवन के, आप तो 45 साल कह रही हैं, मैं 50 साल का अपना अनुभव बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरा पहला ब्रॉडकास्ट 2026 आज चल रहा है, 1976 में हुआ था।
0: बहुत खूब।
1: जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, स्टूडेंट थी, और शुरुआत में वार्ता के माध्यम से मैंने रेडियो से शुरुआत की
0: जी।
1: हालांकि रेडियो की शुरुआत तो बहुत बचपन में ही हो गई थी। मेरे फादर बहुत रेडियो सुना करते थे
0: जी, जी।
1: और उनको क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था। तो सुबह जो समाचार आते थे 8 से 8:15, उसके बाद 8:15 से 9 बजे तक

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता तो वो नियमित सुना करते थे। संडे के दिन वो कार्यक्रम नहीं आता था, रविवार को उसकी जगह बच्चों का कार्यक्रम आता था, 8:15 से 9 बजे तक जयपुर से जो रिले होता था मुकुल कार्यक्रम, तो वो हमें कहते थे इसको सुनो और हम सुनते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, एक अनोखी सी दुनिया लगती थी वो।
1: तो कहते हैं कि वो रेडियो बचपन से ही रग रग में पहले से ही कायम था, उसके लिए ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बिल्कुल,
1: और वो शौक है और वो हमें फिर यहाँ तक ले आया, ये चीज है।
0: हाँ, रेडियो मुझे खींच के लाया, मैं रेडियो तक नहीं खींची हूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, रेडियो ही मुझे खींच के ले आया।
1: बहुत खूब मैम, बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कि बहुत सा प्यारा सा गीत है किनारा फिल्म से, इसको सुन लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें होंगी।

0: जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि आकाशवाणी में या रेडियो से जुड़ी किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ आवाज का ही कमाल होता है। और यकीनन बिना देखे ये कैसे हो पाता था मैम कि बिना देखे रेडियो के पीछे कौन है, आवाज के जरिए कभी मिल जाए तो पहचान लेते थे लोग?
1: बहुत बहुत ऐसा कई मर्तबा हुआ
0: जी जी,
1: क्योंकि आप अनाउंसर हो और आप कार्यक्रम कर रहे हो तो नाम तो उस जमाने में हम बोला नहीं करते थे
0: जी, जी।
1: पर कहीं आवाज का लहजा, उसका ठहराव, कहीं भी जाते थे तो कोई ना कोई पकड़ ही लेता था
0: कि ये रेडियो के पीछे जो आवाज है ये यहाँ पे सामने।
1: बिल्कुल
0: जी। तो ऐसी और कौन सी यादें हैं जो लगता है कि हमें मतलब वो पीछे वाले एरा में खींच के लेकर जाती हैं, और वो बहुत खूबसूरत सा दौर था जब हमें लगा कि भाई ये रेडियो है, कमाल की चीज है, और कितना प्यार करते थे लोग जब मिलते थे तो?
1: असल में देखो, मैंने तो विज्ञान की पढ़ाई की
0: जी,
1: एमएससी किया मैंने जूलॉजी में। मेरी बड़ी सिस्टर इंग्लिश की लेक्चरर थी तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी लेक्चरर बन जाऊं।
0: अच्छा।
1: और उस दौर में संजोग ऐसा बैठा कि मैं डिबेटर बहुत अच्छी थी
0: जी,
1: और अपने शहर में मेरा बहुत नाम था
0: जी जी।
1: शहर के तमाम कॉलेज में कहीं भी डिबेट का कोई कॉम्पिटिशन हो तो मैं फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी भी लाती थी
0: जी।
1: तो रेडियो के लोग कवरेज के लिए आते थे तो उन्होंने देखा बार बार यही लड़की हरे नाम ले जा रही है
0: जी।
1: तो जो कवरेज करने आते थे उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की बहुत बोलती है, अच्छा बोलती है
0: जी जी,
1: और उसका उच्चारण बहुत शुद्ध है, क्योंकि रेडियो में बुलाकर अगर किसी को कुछ काम देते थे तो उच्चारण भी उसका
0: बहुत इम्पोर्टेंट चीज
1: सुधारा जाता था
0: जी जी।
1: तो प्रोड्यूसर बोले अच्छा उसको लेके आओ। तो संजोग से मेरे ही कॉलेज में था एक फंक्शन और उसका मैं संचालन कर रही थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटा शहर है और बहुत पारंपरिक लोग रहते थे वहां पे, रेडियो का इतना ग्लैमर नहीं था
0: जी जी।
1: कि लोग रेडियो में जाएं या दूरदर्शन में जाएं
0: जी।
1: तो वो जो थे कवरेज करने वाले अनाउंसर थे उन्होंने मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा इस लड़की को हम अपने रेडियो में ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाएं? उन्होंने कहा कि भाई इसके पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। बोले हम इससे बात करें? बोले कर लीजिए। उन्होंने पूछा कहाँ रहती हो, किस जगह रहती हो? तो मैं जहाँ रहती थी वहां एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम से हमारी लेन का नाम था
0: जी।
1: उसमें दो तीन ही बड़े बड़े मकान थे, उसमें एक मेरा भी था
0: जी।
1: और एक मंदिर था, एक उसके बाद उनका था। मैंने बताया कि मैं वहां रहती हूँ उनके गली में। तो बोले कि वहां तो मेरे एक मित्र भी रहते हैं। तो वो संजोग से उन्होंने जो नाम लिया वो मेरे पापा का निकला। मैंने कहा हाँ वो तो मेरे ही पिताजी हैं। तो बोले कि अच्छा तुम उनकी बेटी हो, तो फिर तुम रेडियो आओ, मैं तुम्हारे पापा से शाम को बात कर लूंगा
0: जी। ये हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं?
1: ये बीकानेर।
0: बीकानेर
1: एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, राजस्थान का। बहुत खूबसूरत सा,
0: बहुत रेत में शहर
1: जुड़ा हुआ। तो जी उन्होंने बात किया और कि भाई उसको भेज दो रेडियो। और अगले दिन मैं रेडियो गई, वहां प्रोड्यूसर मिले, बोले हाँ हाँ तुम तो बहुत डिबेट करती हो, एक वार्ता लिखनी है तुमको
0: जी।
1: हमने कहा अच्छा। उन्होंने पहली वार्ता दी और वो मैंने थोड़ी सी अपने से लिखी, थोड़ी पापा से मदद ली, थोड़ी बड़ी दीदी से मदद ली, और वो जब ब्रॉडकास्ट हुई उनको बहुत पसंद आया मेरा बोलना। और वहां पर वो एडिट भी करते थे साथ में, मैन्युअली रिकॉर्डिंग होती थी उसको मैन्युअली करते थे। अब तो बहुत आसान हो गया है कंप्यूटर पे एडिटिंग करना
0: जी जी।
1: तो मैंने उनको देखा वो एडिट कर रहे हैं, फटाफट आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं। मेरे को ये बड़ी रोमांचक बात लगी
0: जी।
1: मैंने कहा आप ये कैसे कर लेते हैं? बोले ऐसे ही कर लेते हैं, सीख गए। तो जब

0: जब मैं रेडियो जाती थी मैं एडिटिंग जरूर देखती थी उन लोगों का, और सच बताऊं रेडियो में बोलने से ज्यादा मुझे प्रोडक्शन अच्छा लगने लगा, उसमें मैं माहिर भी हो गई।
1: जी जी।
0: और उसी के कारण से मुझे आकाशवाणी में 5 बार एनुअल अवार्ड मिला।
1: माशाल्लाह, बहुत खूब।
0: 5 अलग अलग विषयों पर मैंने फीचर बनाए, तो वो मेरी स्ट्रेंथ थी। बाद में मैं अनाउंसर हो गई 82 में, और वो भी राजस्थान में ही, बीकानेर से 132 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ स्टेशन है जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही सटा हुआ है। वहां मैं 82 से 88 तक अनाउंसर रही
1: जी।
0: तो वहां छोटा स्टेशन था, हर तरीके का काम करने का मुझे मौका मिला। वहां पे अगर कहानीकार नहीं आया तो आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि ये कहानी भी लिखनी है क्योंकि डेविएशन नहीं हो सकता। युववाणी हो रही है, कवि गोष्ठी में एक कवि नहीं आया तो आपको कविता भी लिखकर सुनानी है।
1: जी, जी, जी।
0: और कभी कभी नाटक भी तैयार करते थे और रूपक भी तैयार करते थे। तो अनाउंसर रहते रहते मैंने बहुत काम किया वहां पे।
1: मतलब इतनी सारी खूबियां ऑलरेडी मौजूद हैं कि किसी भी वक्त कोई भी काम दिया जाए तो हम कर सकते हैं।
0: दिया जाता था। जी, दिया जी। जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे तानपुरा प्लेयर नहीं आए, और मैं शौकिया तानपुरा हिलाती थी म्यूजिक स्टूडियो में जाके, तो जो बांसुरी वादक थे वो मेरे ही स्टाफ के थे
1: जी,
0: वर्मा जी, विजय वर्मा जी, उनका उस दिन बांसुरी वादन होना था और तानपुरा प्लेयर आए नहीं है, तो उन्होंने कसकर मुझे बताया पहली उंगली से ये और फिर दूसरी उंगली से ये 3 तार छेड़ना है। मैं बड़ी शौक से कर रही हूँ, और मैंने उनका वो लाइव आधे घंटे तानपुरा बजाया जो कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं अनाउंसर थी।
1: जी।
0: उसके बाद तो मैं रेगुलर पकड़ी गई, जब कोई नहीं आता था मुझसे तानपुरा भजवाते थे।
1: मतलब ये खूबी भी पता लगी कि आप ये भी कर सकती हैं, और अगर
0: तो शौकिया छोटी स्टेशन पे आपके पास कुछ करने को नहीं तो नहीं बहुत कुछ करते थे।
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: बहुत खूब मैम, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ हो रही हैं, और यकीनन ये जो जर्नी है इसमें इतना लंबा वक्त जो गुजारते हैं हम रेडियो के साथ में, वाकई में ये काबिल तारीफ है कि इतना काम जो आपने पीछे किया। हम और बातें करेंगे लेकिन एक बहुत प्यारा सा ये गीत है, आंधी फिल्म का ये गीत है, चलिए उसको सुन लेते हैं फिर।

0: एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त बेहद अच्छी पर्सनालिटी मौजूद हैं। ललिता चतुर्वेदी मैम हमारे साथ हैं, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी की। और मैंने तो आपको बहुत कम इंट्रो बताया कि मैम लेखिका भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, और मैम ने खुद बताया कि रेडियो के पीछे और उन्होंने कितने कितने काम किए हैं और कितने टैलेंटेड हैं मैम, ये हमें अभी पता चला। तो मैम ये बताइए कि सूरजगढ़ में जब ये आपका प्रोग्राम चलता था, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, उसके आगे का सफर फिर कैसा रहा?
1: सूरतगढ़ में तो तमाम तरीके के कार्यक्रम करे, मतलब एक तरीके से हमें ट्रेनिंग मिली हर तरीके के कार्यक्रमों की।
0: जी जी।
1: और एक दिलचस्प वाक्य बताऊं मैं आपको कि सुबह की ड्यूटी मुझे अक्सर सर्दियों में मिल जाती थी। ड्यूटी चार्ट बनाने वाले सीनियर अनाउंसर होते थे
0: जी जी।
1: और मैं सबसे यंगेस्ट थी, तो सारी सर्दी मुझे सुबह मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट करनी होती थी। और सुबह के समय ही 8:30 से 9 बजे तक पंजाबी गीतों का एक कार्यक्रम होता था, क्योंकि वहां पर 60-40 का रेशियो है। 60% अगर राजस्थानी भाषी हैं तो 40% पंजाबी भाषी लोग भी थे
0: जी, जी।
1: तो उनका भी ध्यान रख करके हमें पंजाबी कार्यक्रम कुछ प्रसारित करने होते थे। तो एक पंजाबी गीतों का कार्यक्रम होता था 8:30 से 9 बजे तक
0: सुबह में,
1: और सुबह क्योंकि रोज मैं कर रही हूं तो मैं ही उसको ब्रॉडकास्ट करती थी।
0: बिल्कुल।
1: और उस जमाने में क्या गायिकाएं होती थी, प्रकाश कौर हैं, सुरिंदर कौर हैं, आशा सिंह मस्ताना हैं, और टेप से हमें वो गाने निकाल कर बजाने होते थे, क्योंकि पंजाबी फिल्में भी उतनी नहीं थी और लोगों की फरमाइश भी होती थी कौन कौन से गाने सुनाने
0: हैं। हमें सुनाने हैं जी।
1: तो वो नियमित कार्यक्रम मैं करती थी। धीरे धीरे मुझे पंजाबी भाषा में भी रुचि होने लगी,
0: मैं
1: वो भी समझ गई किस तरीके से करना है। तो एक बार क्या हुआ कि सूरतगढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर पे लोग गए हमारे यहाँ के इंजीनियर्स देखने की हमारी जो रेंज है वो कितनी है, क्योंकि 300 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर था, बहुत पावरफुल था। तो वहां सुनने के लिए गए कि भाई वहां सुनाई देता है कि नहीं, तो हमें भी कुछ लोगों को ले गए कि वहां इंटरव्यू कर लेंगे आसपास के गांव में ग्रामीण जनों से। खेती बाड़ी का भी कार्यक्रम होता है तो उन किस तरीके से खेती करते हैं। मैं सबसे

0: छोटी और थोड़ी सी मेरे में उत्सुकता थी कि मैं पाकिस्तान का बॉर्डर देखूं, तो आज की तरह उसमें कोई बाड़बाड़ नहीं लगी थी, सिर्फ चौकोर एक सफेद एक पिरामिड सा बना रहता था। उसी सफेद पिरामिड के इस पार लिखा हुआ है भारत और इंडिया और उस पार पाकिस्तान हिंदी और अंग्रेजी में। तो हम देखते देखते वहां एकदम बॉर्डर तक चले गए और चेक पोस्ट वाले लोग साथ में थे, सामने से पाकिस्तानी चेक पोस्ट वाले भी उतर के आ गए, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर पे आपको हलचल होती है वो लोग भी आएंगे
1: आ जाते हैं।
0: तो तुरंत आए कि भाई कौन है, क्या है, ये लोग कैसे आए, तो मालूम पड़ा कि रेडियो के लोग हैं। तो जैसे ही मैं बोलने को हुई, उसमें से एक ने बोला कि आप पंजाबी गाने नहीं बजाते हो? मैंने कहा हां बजाती तो हूं। बोले बीवी मैं तो आपको रोज सुनता हूँ।
1: बहुत
0: खूब। और मैं इतनी चकित और थोड़ी अच्छा भी लग रहा है। मैंने कहा अच्छा आप सुनते हैं? बोले कल आपने वो गीत सुनाया था, फलाने दिन वो सुनाया था, वो गाना बहुत दिन से नहीं सुनाया, आप सुनाइएगा। क्या था वो, लट्ठे दी चादर, ऐसे करके गाना था, वो आपने बहुत नहीं सुनाया, वो भी सुनाइएगा। मैंने कहा अच्छा आपकी बार जाऊंगी सुनाऊंगी। अब वो लोग भी बड़े वो हो रहे कि कोई आया है
1: रेडियो से, कोई आया है,
0: कुछ कर नहीं सकते वहां पे वेलकम या बातचीत। तो थोड़ी दूर पर चने के खेत थे
1: जी,
0: वहां से खूब सारे चने उगे हुए थे, हरे चने जिसे छोलिया कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो उखाड़ करके जितना उनके अंक में भरा गया लेकर आ गए। बोले हम चाय पानी तो नहीं पिला सकते आपको, ये चने खाइए।
1: एक स्वीट गेस्चर उन्होंने
0: स्वीट जेस्टर दिया। तो मैंने उसमें से एक दो चने के दाने तोड़कर खाया और जैसे हमारे हिंदुस्तान का होता है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदुस्तानी चना होता है। सारे लोग ठठाकर हंस पड़े। फिर मेरे सीनियर बोले कि सीमाओं में खेती को थोड़ी बांध सकते हैं, है ना, ये तो एक ही जमीन है इधर की उधर की। अब हम वो चना लेके आने को तैयार नहीं, और मैं अकेली रहती थी, मुझे क्या करना है। मेरे एक इंजीनियर आंख से इशारा कर रहे हैं, ले लेता हूँ इसको घर में बनाएंगे। मैंने कहा ले लीजिए, मुझे क्या है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि हमारे वहां से लेके बहावलपुर तक आपके गाने बजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो में पंजाबी गाने नहीं बजते थे। तो हमारे रेडियो को वहां सुना जाता था। जब ये जाना तो जो हमारे इंजीनियर सर्वे करने गए थे वो तो गदगद हो गए। उनको लगा कि वाह क्या हमारा रेडियो
1: वहां तक
0: पहुंचा है।
1: और ज्यादातर तो, ये लगता है मैम जो फौजी भाई हैं यकीनन उन मतलब वो रेडियो बहुत शौक से सुनते हैं,
0: और कुछ साधन नहीं है उनके
1: पास नहीं
0: का?
1: है। और मुझे याद है कि पहले एक कार्यक्रम आता था फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम, उसमें उनके पसंद के गीत बजाए जाते थे और वो उसी से बड़े खुश हो जाते थे।
0: और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि कुछ पाकिस्तान से फरमाइशें आने लगी, पोस्ट कार्ड आते थे बहुत उस जमाने में, तो हम उनके नाम भी ले लिया करते थे कि पाकिस्तान से इस गीत की फरमाइश आई है।
1: जी जी।
0: तो ये बहुत ही मतलब रोमांचक
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात है अपना नाम सुनकर रेडियो पे, अच्छा लोगों के दिलों में जो सुनने वाले हैं हमारे, इतनी खुशी होती है ना कि उसको बयां करना वाकई में मतलब मुश्किल है उनके लिए। बहुत क्योंकि रेडियो से प्यार करते हैं, रेडियो के पीछे जो आवाजें हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और बड़ी खूबसूरती से।
0: आजकल तो हर कार्यक्रम में नाम बोला जाता है।
1: जी जी।
0: हमें आदेश नहीं था उस जमाने में, पर हमारी आवाज सच में ऐसी होती थी कि जिसको लोग पहचान
1: लेते थे। अच्छा यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है। जैसा कि उन्होंने एक वो दिखाया कि आपको वो प्यार कैसे शो ऑफ करें अपना, तो उन्होंने वो चने दे दिए, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती है। जी तो मैम ये बहुत अच्छी चीज है हमारी जिंदगी में, रेडियो के माध्यम से हम न जाने कितने लोगों से जुड़ते हैं और बहुत लोगों के बीच में इस चीज का क्रेज है, शौक शुरू होता है। एक बहुत प्यारा सा गीत है, इसको सुन लेते हैं लता जी की आवाज में, फिर आगे बहुत सारी बातें करेंगे।

0: जी यकीनन ये साथ यूं ही बना रहे हमेशा हमेशा। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैम से पूछते हैं कि दिल्ली कैसे आना हुआ।
1: जब मैं अनाउंसर थी उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हुई
0: जी,
1: और 88 में मुझे दिल्ली आना था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं थे
0: जी।
1: तो अब दो रास्ते थे, या तो मैं दिल्ली में एज ए अनाउंसर ही आऊं, उसमें मुझे थोड़ी ये लग रहा था कि शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, आपके पास बच्चा छोटा है
0: जी,
1: शहर बदला, आपका जॉब ऑफ नेचर बदला, आपकी अपनी व्यक्तिगत मातृत्व की भूमिका भी बदली, तो कैसे संभाल पाऊंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि अप्रैल मई के बीच में एक डेपुटेशन की पोस्ट निकली भारत सरकार के प्रकाशन विभाग
0: जी,
1: की
0: जी।
1: उसमें उनको कुछ एडिटर्स चाहिए थे, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया और संजोग से मैं मैटरनिटी लीव पे गई। अभी मेरी पूरी छुट्टियां भी नहीं मैंने उनको बिताया था कि वो आ गया कि मुझे
0: सिलेक्शन हो गया,
1: आना है यहाँ पे, आपका सिलेक्शन हो गया है
0: जी।
1: और सिर्फ लिखा था डीपीडी। अब मुझसे उस समझ में नहीं आया कि डीपीडी क्या होता है, पीआईबी को तो फिर भी जानते थे
0: जी जी।
1: तो फिर यहाँ जी पता किया तो मालूम पड़ा डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसमें आज तक आजकल पत्रिका थी, बच्चों की पत्रिका भी छपती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी छपता था और आईएएस ऑफिसर्स के लिए इंडिया छपता था। तो जी मैंने ज्वाइन कर लिया आकर के। अब मेरा जॉब ऑफ नेचर बदल गया। रेडियो में मुझे 6 दिन काम करना पड़ता था, यहाँ 5 दिन का उन दिनों लागू हो गया था
0: जी, जी।
1: और 10 से 5 काम करना है, तो मुझे लगा ये सुविधाजनक है और मैंने वो शुरू किया। अब रेडियो में रहते रहते आपको बोलने पर ज्यादा ध्यान देना होता है, उच्चारण सही हो, सही स्वर, दीर्घ स्वर लगे, किस तरीके से आपको एक्सेंट देना है
0: जी।
1: यहाँ बिल्कुल उसका उलट, आपको लिखना है, लिपि कैसी होनी चाहिए, छोटे ई की बड़े ई की मात्रा, हलंत कहाँ लगना है, चंद्र बिंदु कहाँ लगना है, मतलब जो भी आलेख है उसको संपादन करना है, उसको सुधारना है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। जॉब ऑफ नेचर बदल गया, पर मुझे नया काम लगा और अच्छा लगा, तो मैंने वो
0: एक्सेप्ट किया
1: और 3 साल जमकर किया। उसमें बहुत टाइम मिलता था मुझे, तो वहां के प्रकाशन विभाग की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, मैंने समझ लो आधी लाइब्रेरी तो पढ़ ली होगी,
0: यकीनन पढ़ ली होगी,
1: क्योंकि बहुत फुर्सत रहती थी और बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तकों का संपादन करने का अवसर मिला मुझे। मस्तराम कपूर की बाल कहानी, बहुत बड़े वो बाल कथाकार थे, विजयदान देथा उनकी एक पुस्तक का मुझे संपादन करने का मिला। इस तरीके से बहुत सारे लोगों
0: के साथ
1: काम करने का मौका मिला और उसी दौरान यूपीएससी से आकाशवाणी के लिए वैकेंसी निकली थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गई क्योंकि दिल्ली में थी तो मैं चली गई।
0: ये कौन सी ईयर की बात है?
1: ये 90 की बात है।
0: अच्छा जी,
1: 1990 की।
0: 1990
1: मेरा ऑफिस था पटियाला हाउस की बिल्डिंग है, उसमें प्रकाशन विभाग का
0: जी।
1: और इंडिया गेट को क्रॉस करिए और उधर आप पहुंच जाइए पंडारा, वो जो यूपीएससी का ऑफिस है
0: जी,
1: वहां पर
0: जी।
1: तो पास ही था, तो मुझे, और उसके आगे से ही मैं रोज जाया करती थी, लक्ष्मीबाई नगर में रहती थी तो उसके आगे से ही जाती थी, तो मैं उसको बड़े हसरत भरी नजरों से देखती थी। मुझे कॉल आई, फिर मैं गई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया संजोग से
0: जी।
1: तो फिर मैं यूपीएससी से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे दिल्ली में नहीं रखा गया, मुझे आप अपनी चॉइस बताइए नहीं तो हम पोस्टिंग कर देंगे, और उन्होंने देखा और मुझे आकाशवाणी बीकानेर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में पोस्ट किया। अब वो तो मेरा अपना शहर, वहीं पली बड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहां रही 91 से 94 तक, मैं बीकानेर में रही,
0: 2 साल का वो वक्त गुजारा।
1: हाँ, 2.5 साल का वक्त गुजारा
0: जी।
1: और उसके बाद मेरा दिल्ली आकाशवाणी में, आकाशवाणी दिल्ली में नहीं, मेरे को डीटीपीएस एक हमारी विंग है
0: जी, जी।
1: वहां मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मैं अप्रैल 94 में यहां आ गई थी और 2-3 महीने बाद मैं आकाशवाणी दिल्ली आ गई थी अगस्त सितंबर में, तब से मैं दिल्ली स्टेशन पे रही और बहुत लंबे समय तक रही। बीच में 2006 से 2008 तक जरूर मैं आकाशवाणी रोहतक गई थी, उसके बाद रिटायरमेंट तक मैंने आकाशवाणी दिल्ली में अपनी सेवाएं दी हैं।
0: बहुत खूब। और आज ये खूबसूरत मौका है मैम कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में दोबारा से मौजूद हैं। चलिए एक बहुत प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: हम और जानेंगे।
1: वो जब याद आए

0: एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सरला मैम। और अभी जब हम गाना सुन रहे थे तो मैम ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए।
1: नसरीन
0: जी,
1: मेरा नाम ललिता है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं सरल स्वभाव की हूँ इसलिए तुम्हें सरला लगी।
0: मैम बहुत बहुत माजरत, आप यकीन माने आपकी बातों में मैं इतना खो गई कि मुझे नाम, आप बहुत इतनी प्यार से बात कर रही हैं, इतनी सरल हैं, इसलिए मुझे वो दिमाग में सरला रह गया। बहुत बहुत माजरत। लेकिन मैम यकीन माने जो आपने अभी एक्सपीरियंस शेयर किए और जो इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले भी सुने। यहां पर जो स्टूडियो में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई कि वो कभी आप भूल नहीं पाए, ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिनका इंटरव्यू आपने किया हो? और
1: बहुत सारी
0: जी।
1: मैंने लंबे समय तक हिंदी वार्ता विभाग में अपनी सेवाएं दी
0: जी।
1: तो हिंदी के तमाम दिग्गज आते थे, राष्ट्रीय स्तर के कवि साहित्यकार, उनसे भी भेंट वार्ताएं की मैंने
0: जी।
1: नामवर सिंह जी थे, मैनेजर पांडे जी थे, संस्कृति कर्मी कपिला वात्सायन जी थी
0: जी।
1: उसके अलावा कई जो हमारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते थे उनके इंटरव्यू किए
0: जी।
1: लोकसभा अध्यक्षा थी हमारी सुमित्रा महाजन।

0: सुबह सुबह उन्होंने मुझे 10-10:30 बजे फोन कर दिया कि मैं लेकर 11 बजे देवानंद साहब को आ रही हूँ
1: जी।
0: अब मैं तुरंत भागी अपने डायरेक्टर साहब के पास, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी होते थे मेरे डायरेक्टर
1: जी,
0: कि वो आने वाले हैं, उनकी भी उपस्थिति चाहिए। तो मालूम पड़ा वो तो मंडी हाउस गए हुए हैं किसी
1: मीटिंग में,
0: कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है। फिर उनकी पीए को कहा कि भाई अर्जेंट मैसेज तो भिजवाइए किसी भी तरीके से। और हमने यहाँ थोड़ी सी तैयारी की, स्टूडियो कौन सा लेंगे, कैसे करेंगे, कुछ प्रश्न बनाए इंटरव्यू करने के लिए। वो बोले कि तुम लोग तैयारी करो और शुरू करो। और मेरे डिप्टी डायरेक्टर थे एक मिश्रा जी, देव कुमार मिश्रा, बोले हाँ हाँ हम तैयारी करते हैं। और हम लोगों ने इंटरव्यू किया और यकीन मानिए इतना बड़ा इंसान और इतना सरल इंसान,
1: इतने सहज
0: कि मैं उनको देखती रह गई। और वो इंटरव्यू जो था, मेरे साथ बैठे थे राजीव सक्सेना भी जो एफएम में
1: जी
0: अनाउंसर थे
1: जी।
0: तो उनको साथ में बैठाया गया और हमने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया उनका। सारे पक्ष उनके पूछे थे
1: जी।
0: उनके चिर युवा होने का राज भी पूछा था कि क्या कारण है कि आप आज तक
1: इतनी फैन
0: दिलो दिमाग से जवान
1: हैं।
0: और वो आनंद लेने लगे। तो वो कार्यक्रम बाद में एफएम गोल्ड पर ही बजा, एफएम गोल्ड पर कई किश्तों में बजा, उसके बीच में गाना लगा करके, और बहुत लोकप्रिय हुआ। और उसको फिर कई बार बजाया गया। तो
1: कितने घंटे का वो कार्यक्रम था, कितना
0: मतलब रोज उसमें से 2 घंटे का कार्यक्रम तैयार करके वो लोग बीच में गाने भी लगाते थे
1: जी।
0: और वो बजा था
1: तो काफी लंबी बातचीत रही होगी।
0: बातचीत लंबी
1: सारा
0: थी। उनने अपने जीवन के बारे में सारे अनुभव बताए, फिल्मों के बारे में बताए, कुछ वो सामाजिक मुद्दों पे भी बोले। सिर्फ ये नहीं कि फिल्मी बातें हो रही हैं, सामाजिक मुद्दों पे भी बातें हुई
1: जी।
0: यूं समझ लो जैसे आज हम कहते हैं ना कि रेडियो भारतीय चेतना में बहता है,
1: बिल्कुल
0: तो वैसे ही उनकी चेतना में भी रेडियो था। और रेडियो के साथ वो ऐसे घुल मिल गए, नहीं तो फिल्मी हस्तियां रेडियो पर आने से थोड़ा गुरेज भी करती हैं और आ भी जाती हैं तो वो थोड़ा रेडियो को कमतर ही समझती हैं। पर उन्होंने इतना सम्मान दिया रेडियो को, इतने दिल से जैसे अपनाया हो, हमें भी बड़ा अच्छा लगा।
1: मैम यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही हम्बल होते हैं। और हम ऐसे महान कलाकार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके बारे में तो हम जानते ही रहते हैं कि हाँ वो किस तरह की पर्सनालिटी हैं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा यकीनन। एक गाना सुन लेते हैं
0: जरूर।

0: तो मैम के साथ हमारी खूबसूरत बातचीत चल रही है, गाने जब हम सुन रहे हैं तब भी और जब ऑन एयर बात हो रही है तब भी, और यकीन माने हमारा दिल चाह रहा है कि ये जो सिलसिला है ना यूं ही चलता रहे, हम बीच में कहीं रुके नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातें सुनते रहें। लेकिन वक्त तब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आगे और बात करें, लेकिन फिर कभी किसी रोज़ किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। तो आपसे और जो बातें रह गई हैं जानने के लिए ज़रूर आपसे पूछेंगे मैम।
1: ज़रूर
0: जी। और आप हमारे साथ स्टूडियो में आई और इतने सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर के लिए किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल से शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, आपको भी। यादों की पोटली तो खोल ली है पर वापिस समेट लेती हूँ।
0: जी मैम।
2: समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से भेंट की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। ये मुलाकातें नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया था। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। झारखंड की छात्रा

0: National Investigation Agency has invited nominations for deputation posts of Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police for all India postings. There are two vacancies for Additional SP in Pay Matrix Level 11 and three vacancies for Deputy SP in Level 10. Eligible officers are required to submit applications through proper channel along with APAS, vigilance clearance and other supporting documents within 45 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application formats is available on the NIA recruitment portal. The website is www.nia.gov.in. I repeat the website, kindly refer to www.nia.gov.in. National Institute of Social Defence under the Ministry of Social Justice and Empowerment has invited applications for filling up one post of Deputy Director Training NCDAP on transfer or deputation basis. The institute is located in Dwarka, New Delhi. The post carries the pre-revised pay scale of 10,000 to 15,200. Eligible candidates are required to submit their applications within 45 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed information regarding eligibility criteria, application procedure and terms of deputation is available on the official website. That is at www.nisd.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर, वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास आयुक्त कार्यालय के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के दो पद उपलब्ध हैं। इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट www.csez.gov.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है जिसका पता है www

0: www.cwc.gov.in. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए आमंत्रित कर रहा है आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट को देख सकते हैं igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और ले चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेटलाइन सेगमेंट में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, उन छोटे छोटे कामगारों की जिन्हें हम कहते हैं कि वो वाकई में अच्छा काम करते हैं लेकिन कई बार उनको वो मौके नहीं मिलते हैं जिससे कि उनकी प्रतिभा को एक मंच मिले और उनको आर्थिक सशक्तिकरण मिले। लेकिन सरकार की जो अब योजनाएं आई हैं उनसे उन्हें मिल रहा है सशक्तिकरण, किस तरह से मिल रहा है आपको बताएंगे डेडलाइन में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार जागृति and to our listeners, namaskar, good afternoon, well, good day everybody. Well, this is Parikrama and Jagriti already told you there is so much that we'll explore, that we'll unfold and we'll discuss about. There is so much to do. Well, yes, selection of news, then our discussion segment, Dateline India. We will be discussing about MSMEs in great detail in just a few moments. But first, let us begin with the headlines, Jagriti, straight away.
2: Bilkul. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू।
3: इंडिया एंड यूएई सेट टू टेक बायलैटरल टाइज टू नेक्स्ट लेवल ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू अबू धाबी टुमारो।
2: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
3: होम मिनिस्टर अमित शाह सेज इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डिजास्टर मैनेजमेंट।
2: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।
3: एंड इन बैडमिंटन, इंडियाज पीवी सिंधु एंड मेन्स डबल्स पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी एंटर क्वार्टर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन। So listeners, this is our discussion segment, Dateline India. Let's start with it. Well, again, empowering the grassroots economy through rural and semi-urban MSME, such a great topic. So there was a time, Jagriti, when a small shop in a village or somewhere else as well, or tiny workshop in a semi-urban town survived only on hope, on hard work and word of mouth as well.
2: बिल्कुल। और एक कुम्हार जो होता है वो अपने साप्ताहिक बाजार में खरीदारों का इंतजार करता है। शगुन, एक जो दर्जी दिन रात कपड़े सिल रहा है वो भी इंतजार करता है और इस चिंता में रहता है कि क्या उसे समय पर भुगतान मिलेगा।
3: विलियस एंड अ वुमन रनिंग अ होम मेड पिकल बिजनेस वंडर्ड यूज टू वंडर इफ अ ड्रीम कुड एवर ग्रो बियॉन्ड हर नेबरहुड एंड पीपल वुड लाइक टू taste it, people would get to taste it basically. Today that story is changing steadily but powerfully. India's MSMEs, micro, small and medium enterprises are becoming the heartbeat of the nation's growth story.
2: बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे उद्यम हैं लोगों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनसे तस्वीर बदल रही है और खास बात ये है कि ये उद्यम भारत की जीडीपी में 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 49% का योगदान देते हैं और लगभग 32 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराते हैं। तो आप ये फिगर देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर किस तरह से अपना विस्तार कर रहा है। विदेश भेजे जाने वाले बिल्कुल और विदेश भेजे जाने वाले जो मसालों के बॉक्सेस होते हैं या फिर कहें कि हाथ से बने जो कपड़े होते हैं या फिर हर छोटे सर्विस सेंटर के पीछे कहीं न कहीं एक एमएसएमई ही होता है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दे रहा होता है। तो असल में क्या होता है, जब सबसे छोटे उद्यमी को ये महसूस होने लगता है कि उसे भी समर्थन मिल रहा है।
3: Well, yes, and the answer, if we explore it further, it can be seen in thousands of towns, villages, districts. Well, if we take an example here, take a small woman-led millet snacks business in the district of Odisha. So a few years ago, the owner struggled to get a bank loan even because she had no collateral. Today, through government-backed schemes and digital registration platforms as well, businesses like hers, these millet snacks, they are entering the formal economy, and Jagrati, it's getting easier to access credit and find customers far beyond their local markets.
2: बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो यही असली बदलाव है क्योंकि छोटे से छोटा जब भी उद्यम शुरू होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर मार्केट की रीच, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते हैं। बिजनेस शुरू हो गया लेकिन रन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है जो बदलाव है। उद्यम और उद्यमियों को जो सहयोग मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अब 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। लाखों उद्यमियों के लिए ये महज एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि जो पहले कभी उन्हें बहुत दूर लगा करते थे उन अवसरों का प्रवेश द्वार है ये।
3: एंड अ नेशन कैन नॉट बिकम ट्रूली सेल्फ रिलायंट इफ इट्स स्मॉलेस्ट क्रिएटर्स दे रिमेन इनविजिबल, राइट? एंड दैट इज प्रिसाइसली वेयर दीज रिफॉर्म्स आर मेकिंग अ डिफरेंस। वेल, यू वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन अ ग्रेट स्केल। द गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन वेरी क्लियर to strengthen the grassroots economy from bottom upward.
2: और इससे भी ज्यादा उत्साहजनक बात यह है कि जो ट्रांसजेंडर उद्यमी हैं उनके लिए विशेष सहयोग दिया जा रहा है इसमें, जिसमें गारंटी कवरेज में बढ़ोतरी और फीस में छूट शामिल है। इससे एक सशक्त संदेश जाता है कि विकास पर सभी का अधिकार होना चाहिए और सभी का अधिकार भी है। जिन लोगों को भी अवसर मिलता है जो काम कर रहे हैं उनके लिए अधिकार भी मिल रहे हैं।
3: So MSMEs, they are the backbone of our economy now. And what happens when a business has potential but needs investment to grow bigger? Well, this is the question which we also have been discussing so far. And this is where the Self-Reliant India Fund steps in. It is designed to provide equity support to the MSMEs. The fund has already supported hundreds of enterprises with investments worth thousands of crores. So somewhere in Gujarat, a rural textile unit may be scaling up production and hiring more workers.
2: और अगर पूर्वोत्तर के किसी हिस्से में स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय की बात अगर हम करें तो अब वो राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। वो सिर्फ जहां पर लोकल मार्केट है वहीं तक नहीं है, सरकार का सहयोग है या फिर तमाम ऐसे उनको सपोर्ट मिल रहे हैं जिससे कि वो नेशनल लेवल पर भी पहुंच रहे हैं।
3: डिफरेंट स्टेट्स,
2: बिल्कुल डिफरेंट स्टेट्स हैं। सेंटर पर अगर जब वो आ जाते हैं तो बाकी स्टेट्स की रीच भी उनके लिए इजी हो जाती है। और ये सफलता की कोई इक्का दुक्का कहानियां नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक सशक्त भारत को आकार दे रहे हैं, क्योंकि भारत केवल कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा अमीरों का ही जिसे कहना चाहिए देश नहीं है। यहां पर अमीर है, गरीब है, हर तरह का तबका है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूत बना रहा है। और इसके बाद
3: अगर गेटिंग ग्रेट सो मेनी चांसेस टू डू इट राइट नाउ,
2: बिल्कुल, और छोटे छोटे एफर्ट्स जब उन्हें कहीं सपोर्ट मिलता है, जो एफर्ट्स होते हैं तो वो उनके लिए एक बड़ी सफलता की कहानी भी बन जाते हैं।
3: राइट, एंड वी कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स वी अवेल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट?
2: बिल्कुल,
3: सो मेनी पर्क्स।
2: और हमें कई बार इससे जो वहां का लोकल, जैसे अभी आप बात कर रहे थे पिकल्स हो गए या कहीं पर मिलेट्स के छोटे छोटे पापड़
3: Snacks.
2: हो गए, तो वो जो लोकल का टेस्ट होता है वो हम सबको मिल जाता है।
3: ट्रू ट्रू।
2: और अगर बात करें बीच में जो कोविड महामारी आई उसके बाद आधुनिक इतिहास का वो सबसे कठिन दौर था, इसमें चीजें काफी बदली।
3: एंड they changed quite a bit, and many businesses, they feared closure, shops, they fell silent, orders, of course, they stopped.

0: upcoming, and yet millions of MSMEs, they survived because of timely support through the Emergency Credit Line Guarantee Scheme.
1: बिल्कुल, और बाद में कुछ रिपोर्ट जो आई उनसे पता चला कि लगभग 14,60,000 एमएसएमई खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए बनने से भी बचाया गया. इन आंकड़ों के पीछे असल में बहुत सी वजहें थी, जिसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट चल रहा था वो एक पारिवारिक व्यवसाय था जिसने कि अपने आप को मुश्किल दौर से बचाया.
0: Well, there was struggle at that time as well, and another long-standing struggle for MSMEs was delayed payments. Every small business owner knows this pain. So you deliver goods on time, you complete the service honestly, and the customer avails the benefits, but payment gets delayed for months. Meanwhile, salaries, they still have to be paid. So raw materials must still be purchased, electricity bills, they do not wait, even water bills.
1: बिल्कुल, सारे bills को time पर payment करना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है. और इसलिए भारत ने और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ इसका जवाब दिया. एमएसएमईडी एक्ट के तहत खरीदारों के लिए यह जरूरी है कि वे माइक्रो और छोटे उद्यमों को 45 दिनों के अंदर पेमेंट कर दें. समाधान और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म व्यवसायों को डिजिटल तरीके से शिकायतें दर्ज करने और पेमेंट से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद भी कर रहे हैं.
0: एंड इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन, इट इज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एक्चुअली. वन ऑफ द मोस्ट हार्टवार्मिंग पार्ट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द सपोर्ट विच इज बीइंग एक्सटेंडेड टू ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थ्रू द पीएम विश्वकर्मा स्कीम. So let's think of the hands that quietly build India every day, the blacksmith shaping iron tools, the weaver creating intricate fabrics which we get to wear them.
1: बिल्कुल, पत्थर को तराश कर सुंदरता गढ़ने वाले मूर्तिकार जो कि वर्षों तक बिना किसी पहचान या व्यवस्थित सहयोग के ही अपना गुजारा कर रहे थे, पीएम विश्वकर्मा योजना उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, टूल किट के लिए प्रोत्साहन, रियायती ऋण और एक औपचारिक पहचान प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक कारीगर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.
0: एंड इंडिया इज नॉट ओनली प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशन विद डिग्निटी.
1: बिल्कुल, और पूरे देश में ऐसे लाखों प्रोजेक्ट रोजगार और आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई छोटा बिजनेस सफल होता है तो उसका असर सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसे कहीं आगे तक पहुंचता है. बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, गांव आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं. और अगर देखा जाए तो क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है इसीलिए वहां से युवा पलायन करते हैं, तो अगर गांव में खासकर इस तरह के एमएसएमई जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो डेवलप हों, लोग शुरू करें, तो वहां
0: पर स्टे होम विद देयर फैमिली.
1: बिल्कुल, पलायन की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि पलायन कर जाते हैं. गांव के गांव आप देखेंगे कि इस समय वहां पर लोग नहीं है, घरों पर ताले लगे हैं, तो ऐसे में वहां सशक्तिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं भी हैं वो भी मजबूत होंगी और हो रही हैं. कहीं ना कहीं जो ये अब योजनाएं शुरू हो रही हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए और इस सभी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनसे हमारा देश और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है.
0: एंड यू एक्सप्लेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट सच इन ग्रेट डिटेल एंड नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू अर्बन पॉकेट्स बट ग्रोथ रीचिंग द लास्ट माइल. एंड परहैप्स दिस एंटायर स्टोरी लीव्स अस विद वन पावरफुल रियलाइजेशन, इंडियाज राइस इज नॉट बीइंग बिल्ट ओनली इन बोर्ड रूम्स और जायंट इंडस्ट्रियल पार्क्स, इट इज बिल्ट इन नैरो मार्केट लेन्स, रूरल वर्कशॉप्स, टाइनी स्टोर्स विद बिग ड्रीम्स.
1: बिल्कुल, हर पंजीकृत कारीगर, हर स्वरोजगार करने वाला युवा, हर पहली बार उद्यमी बनने वाला व्यक्ति, हर ग्रामीण उद्यम जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है, ये सभी मिलकर भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है.
0: First, we'll talk about Vijayawada. So, Akashwani Vijayawada is celebrating 90 years of service with special cultural programs and public outreach activities, a major highlight being Swar Sandhya, and this features music and traditional Garaga dance performances. The celebrations will conclude with a special walkathon in Vijayawada on 19th of this month. We have more details. Let's listen in.
2: Akashvani Vijayawada conducted grand celebrations marking 90 years of Akashvani service in the fields of broadcasting, culture and public communication. As part of the year-long celebrations being organized from June 8, 2025, the station conducted a series of special programs and public outreach activities. The major highlight of the celebrations was the cultural program Swarasanja held at Tummalapalli Kalakshetram in Vijayawada featuring musical performances by the Sarvepalli sisters and traditional Garga dance presentations.

0: Explaining the celebrations, Akashwani Vijayawada station's program head G. Divya said,
1: "Under the evocative theme, My Companion Akashwani, the station executed an extensive outreach program that bridged generations and celebrated the enduring spirit of radio. The festivities reached a crescendo on May 10th, coinciding with the Mother's Day at the Tummalapalli Kshetraya Kalakshetram. The evening featured a high-caliber musical concert by the renowned Sarvepalli sisters, followed by the vibrant display of Andhra heritage through a traditional Garaga folk dance. The success of the evening was evidenced by a houseful auditorium with every seat occupied by a diverse audience of listeners and art enthusiasts. The resounding success of these programs is a testament to the deep-rooted bond between Akashwani and its listeners."
0: As part of the concluding phase of celebrations, Akashwani Vijayawada will organize a special walkathon in the city on May 19th. The celebrations reflect Akashwani's enduring contribution to public service broadcasting and the preservation of culture over the past 9 decades. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
2: और विजयवाड़ा से आते हैं पुणे की ओर, जहां पर युवाओं में इस समय जो सबसे अधिक समस्या देखी जा रही है, नशीले पदार्थों की इस लत को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान किस तरह से कार्य करेगा, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता माधवी कुलकर्णी की इस रिपोर्ट में।
3: पुणे के युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी विषय में ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट और ज्ञान प्रबोधिनी, इन दो संस्थाओं ने हाल ही में शहर में एक सर्वेक्षण किया। इसके आधार पर संयम नाम की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता होने के बावजूद वास्तविक रूप से इसके सेवन का स्तर चिंताजनक है। मित्रों के समूह और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संपर्क, साथ ही साथ लापरवाही के कारण नशे की लत का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुणे में ड्रग मुक्त प्रभाग अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,
4: पुणे शहर में हमने ड्रग्स के विरुद्ध और नशे के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग स्तर पे हमने मुहिम चला रखी है, जिसमें एक हमने जो नवनियुक्त कॉरपोरेटर्स हैं उनका और पब्लिक का सहभाग लेने की दृष्टि से हमने एक ड्रग मुक्त प्रभाग, ये एक नया उपक्रम हमने शुरू किया है, जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलके पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध, ड्रग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पे मुहिम चला रहे हैं। अभी तक हम ज्यादा कंसंट्रेट सप्लाई चेन पे करते थे, अब हम कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां उनको काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेज रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो युवक है उनको एक उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और थोड़ी सी उनके मन में एक डिटरेंस भी पैदा होना कि इस प्रकार के विषय पे जीरो टॉलरेंस है। साथ साथ कॉलेजेस और स्कूल्स के जो परिसर में जो टोबैको सेलिंग सेंटर्स हैं, पान के दुकान हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पे टारगेट की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुणे शहर से हम ड्रग्स को टोटली बाहर कर पाएंगे।
3: नशीले पदार्थों के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस अभियान में समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए पुणे से मैं माधवी कुलकर्णी।
5: Heading to Panaji now, the Goa Konkani Academy has launched a landmark project to ensure the architects of the Konkani language are never forgotten. A report.
6: The Goa Konkani Academy has officially announced the commencement of Konkani Bhasha Sahitya Silpakar course, an ambitious encyclopedia designed to chronicle the lives of those who shaped the region's linguistic and cultural identity. This major initiative seeks to document a wide array of contributors ranging from freedom fighters and poets to theatrists, researchers and digital media influencers. By creating this official record, the Academy aims to introduce future generations to activists and artists who championed the Konkani movement across various dialects and medium. The Academy is now inviting submissions from public to ensure the collection is globally recognized and comprehensive.

0: and also visited the Karachi jail to help them. In September 1942, when the Quit India movement was at its peak, he resigned from the Defence Council and relinquished the titles given by the British in protest.
1: Unfortunately, the brave nationalist Allah Bakhsh Sumro was assassinated on the 14th of May 1943 by one of the Muslim League extremists while he was travelling to his hometown of Shikarpur.
2: और आज प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि है. उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था. हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वो ही रेडियो में लेकर आए. सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना तंत्र विकसित किया जो आज भी नवीन प्रयोगों के साथ अग्रसर है. और आज ही महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर की पुण्यतिथि है. वे महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे. एक ओर आचार्य रघुवीर ने कोश की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार संपन्न किया तो दूसरी ओर विश्व में, विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रह और संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया.
3: Today we are remembering the King of Blues, B.B. King, the blues guitarist, singer, songwriter and record producer. He introduced a sophisticated picking style of actually soloing based on fluid string bending, shimmering vibrato, staccato picking that influenced many later electric guitar blues players as well.

0: So he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1987 and is one of the most influential blues musicians in history, earning the name, which I started with, the King of Blues.
1: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन की आज जयंती है। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगू और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरूआत 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से की। 1958 में उनकी दूसरी फिल्म नील आकाशेर नीचे आई। इस महत्वाकांक्षी फिल्म में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाया और उनकी फिल्म 22 श्रावण 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी। मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय रहे। इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। आइए सुनते हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रूपये से बढ़ाकर 2,441 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। शो है गाते गुनगुनाते, जिसमें हम बात करते हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों के बारे में। जी, फिल्म थी कुली, 1983 में बनी थी ये फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और रति अग्निहोत्री मेन लीड रोल में थे। फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है नीले फूले का भी था। ये अमिताभ के साथ उनकी इकलौती फिल्म थी। फिल्म में अमरीश पुरी का भी छोटा सा रोल था, जो कि फ्लैशबैक में था। कुली फिल्म की शूटिंग मुंबई के रेलवे स्टेशन पर करना इम्पॉसिबल था, इसलिए इसकी शूटिंग जो है बेंगलोर सिटी स्टेशन पर की गई थी। इसके अलावा भी फिल्म का बहुत सा हिस्सा जो है बेंगलोर में ही शूट किया गया था। मनमोहन देसाई ने बताया कि हम बहुत से आर्टिस्ट को मुंबई से बेंगलोर लेकर गए, उन्होंने कुली के कॉस्ट्यूम्स पहनाए गए और कहा कि ये यहां ऑब्जर्व करें, कुलियों के बैठने उठने का तरीका, सामान उठाने का तरीका, बीड़ी पीने का भी जो तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, वो उनको भी ऑब्जर्व करें। और उन कलाकारों ने फिल्म में ऐसा ही किया और किसी को भी पता नहीं चला कि ये जो कलाकार हैं वो असली हैं या नकली।

एक ऐसी फिल्म जिसने तीन तीन नेशनल अवार्ड्स जीते। फिल्म थी उमराव जान। 1905 में लिखे मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव अदा पर बेस्ड थी और इस फिल्म की कहानी लखनऊ की एक शायरा उमराव जान अदा की थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था मुजफ्फर अली ने। जब उन्होंने इस फिल्म में रेखा जी को साइन करने का सोचा तो उन्हें काफी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेखा जो है कमर्शियल फिल्मों की हीरोइन थी, साउथ से आई थी और इस फिल्म में उन्हें उर्दू बोलनी थी, वो भी खालिस उर्दू। खैर, किसी भी बात पर उन्होंने अपनी रजामंदी ना जताते हुए, किसी की बात ना सुनते हुए मुजफ्फर अली ने रेखा जी को ही साइन किया और रेखा जी ने भी मुजफ्फर अली के भरोसे को कायम रखा और इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म के लिए बाकायदा उन्होंने

उर्दू सीखी, बेमिसाल अदाकारी की और अब बारी थी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को लेने की। उसके लिए मुजफ्फर अली ने खयाम साहब को साइन किया, पर खुद खयाम साहब बहुत ज्यादा परेशान थे इस बात से कि इस फिल्म के गीतों का मुकाबला जो है कुछ साल पहले बनी फिल्म पाकीज़ा से किया जाएगा। फिल्म पाकीज़ा में लता जी ने अपनी आवाज दी थी, तो इस फिल्म के लिए खयाम साहब ने आशा जी के जरिए सारे गीत रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया। खयाम साहब का म्यूजिक और आशा जी की आवाज ने करिश्मा किया और रातों रात फिल्म के गीत पूरे हिंदुस्तान की जबान पर थे। इस फिल्म के लिए आशा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर और खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। रेखा जी को भी बेस्ट एक्ट्रेस और मुजफ्फर अली को भी फिल्म फेयर के बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. रशियन फॉरेन मिनिस्टर

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गे

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सदाबहार गीतों का। सदाबहार गीतों में आपके साथ है विभा। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना

2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: और अब सुनिए संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वैश्विक अनिश्चितताया आर्थिक समाह्वानानां च

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. आज के कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ श्रोताओं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस सर्ज, Sensex jumps nearly 800 points, Nifty settles at 23,690. India's wholesale inflation soars to 8.3% in April this year, and US and China agree on keeping the Strait of Hormuz open for free flow of energy.
1: घरेलू शेयर सूचक अंकों में बढ़त, सेंसेक्स लगभग 800 अंक बढ़ा, निफ्टी 23,690 पर बंद हुआ। इस वर्ष अप्रैल माह में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर में 8.3% की वृद्धि हुई और अमरीका तथा चीन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर सहमत हुए।

0: And before we take our main stories in detail, let's have a look at the disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, एक नजर बाजार की हलचल पर. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की बढ़त देखी गई. लगभग सभी क्षेत्रों में आज खरीदारी हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 790 अंकों की बढ़त के साथ 75,399 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 277 अंक उछलकर 23,690 पर आ गया. विस्तृत शेयर बाजार की बात करें तो मिडकैप 100 में लगभग 1% से अधिक की तेजी देखी गई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक नकारात्मक रुझानों के साथ लगभग सपाट बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. Sensex gained 790 points to close at 75,399, while Nifty added 277 points to settle at 23,690. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 jumped 1.1%, while the small-cap 100 closed flat with a negative bias.
1: इससे पहले बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की थी और दोपहर कारोबार में मुनाफा वसूली के कारण और तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में भारतीय एयरटेल के शेयर 5.3% से अधिक, इटर्नल 3.3% से अधिक और एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगभग 2.7% का उछाल आया. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस लगभग 2.5%, टेक महिंद्रा लगभग 2.2% और एचसीएल टेक के शेयर 1.5% से अधिक लुढ़के.
0: Earlier, the markets opened on a positive note with a bullish momentum strengthening during the afternoon session amid value buying support. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 21 out of 25 sectors edged upward. In the top gainers, telecommunications rose nearly 2.9%, healthcare climbed 2.1% and metals added 2%. Among the top losers, IT shed over 1.8%. Focused IT lost nearly 1.8% and energy dropped 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,107 companies advanced, 2,076 declined and 190 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 95.76 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.56 पर चल रहा था. पुनीत, आज हमने बाजार में उछाल देखा है और कई दिनों से उतार चढ़ाव भरा माहौल हम देख पा रहे हैं, जब से युद्ध जो है अपने चरम पर नजर आ रहा है और बहुत तरीके के सेक्टर्स में अलग

0: अलग दिन अलग अलग चीजें नजर आती हैं, सुर्खियां अलग अलग चीजें इंडिकेट करती हैं, जो हमारे निवेशक हैं और जो श्रोता हैं दोनों के मन में अलग अलग तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे में अगर हम आज के बाजार को देखें, आज की हलचल को देखें, तो वो रुझान आपके लिहाज से किस तरफ है?
1: तो प्राची, आपने सही कहा कि अभी पिछले कुछ समय से, पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें, जब से युद्ध खाड़ी में युद्ध शुरू हुआ है, तब से बहुत वोलेटाइल मार्केट रही है। शुरुआती दौर में मार्च में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी मार्केट्स में, अप्रैल के महीने में काफी रिबाउंड आया, काफी रिकवर हुआ मार्केट्स, पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी थी, वहां पर काफी गेन्स रहे थे निवेशकों के लिए। मुख्य बात हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो विदेशी निवेशक हैं, वो भारतीय बाजारों में काफी बिकवाली कर रहे हैं। और उसका भी मुख्य कारण है कि जो रुपए डॉलर में जो रुपए की वीकनेस है, करीब करीब 95 से 96 रुपया टू द डॉलर, यूएस डॉलर, वहां तक स्तर तक ये रुपया के एक्सचेंज रेट जो है गिरा है, तो उसको चलते वो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी सेलिंग कर रहे हैं और वो प्रेशर हम देख रहे हैं इंडेक्स के ऊपर भी। पिछले, यदि मैं इस महीने की बात करूं, मई के महीना भी करीब आधा महीना ही हुआ है, 14-13 मुश्किल से 10-12 दिन की ट्रेडिंग हुई है, इसमें भी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नेट सेलिंग एफआईएस की हो चुकी है। हालांकि आज का दिन अच्छा था, आज पहली बार पूरे सप्ताह महीने को देखें तो आज थोड़ी मामूली बाइंग रही है एफआईएस की। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेशर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, उसकी वजह से मार्केट ड्रैग कर रही है। दूसरा मुख्य कारण रहा है कि जो आईटी सेक्टर, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज हैं भारत की, अब बहुत बड़े पैमाने पे निर्यात करती है। इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, करीब $300 बिलियन से ज्यादा का हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हर साल करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का, वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, वहां पर कंपनियों में हम बिकवाली देख रहे हैं, तो इससे थोड़ी नर्वसनेस रही है मार्केट्स में। कुल मिलाकर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा मिला जुला रुख है। कुछ सेक्टर्स, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स आए हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 25%
0: काफी खरीदारी
1: हुई। तो देखिये, तो मिला जुला रुख है, कुछ सेक्टर्स में हम परेशानियां महसूस कर रहे हैं और ये परेशानियां हमारी बनाई हुई नहीं है, कुछ हद तक इम्पोर्टेड है, क्योंकि हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, वो जो प्रेशर है हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। तो मिला जुला रुख है, सो फार वी हैव डन वेल, लेकिन वी नीड टू बी कॉशियस, हमें सजग रहना चाहिए कि आगे प्रेशर्स के लिए तैयार रहे हम।
0: पुनीत, क्योंकि आपने क्षेत्र विशेष की बात की है, कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के बारे में भी आपने बताया, उसमें आपने डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट आईटी की आपने बात की, तो इस हिसाब से आपके लिहाज से अभी के समय में, बल्कि मैं आज के समय को प्रतिबद्ध करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या देखते हैं निवेशकों के लिहाज से, अभी कहां उन्हें अपना पैसा लगाना चाहिए?
1: प्राची, काफी मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि अगर आप वैल्यू बाइंग की नजर से देखें तो आईटी क्षेत्र जो काफी बीटिंग ले रहा है, और रोज हम देखते हैं, दिन प्रतिदिन वहां पर सेलिंग आती है, शेयर्स गिरते हैं और एफआईआईज ज्यादातर वहां सेलिंग कर रही है, वहां मुझे लगता है वैल्यू है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो आने वाले, उन काफी कैश रिच कंपनी है, कोई भी डेट उनके ऊपर नहीं है और बड़े पैमाने पर इनमें से कुछ बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट्स तो 60,000-70,000 करोड़ रुपए साल का वो मुनाफा कमाती हैं। तो ये 5 से 6 लाख इम्प्लॉयज वहां काम करते हैं, तो देखिए कुछ हिट वहां हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद, 1 साल चाहे 2 साल, जब ये स्टेबलाइज करेंगी तो वहां से हम एक बड़ा एक बदलाव देखेंगे। और एआई को लेकर ये सब, ये जो जितना भी सवाल उठ रहे हैं आईटी सेक्टर क्षेत्र को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि क्या इम्पैक्ट होगा उसको लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रांजिटरी फेज है। तो आईटी सेक्टर हालांकि वो गिरा हुआ है, पर फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि वहां धीरे धीरे निवेशकों को जरूर, वहां वैल्यू बाइंग बहुत है, वो कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र जो अच्छा है वो ऑटोमोबाइल्स, हम अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, वो भी अच्छे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं।
2: पुनीत, द कंसर्न्स अर्लियर वाज दैट द वॉर वुड कंटिन्यू बिटवीन ईरान एंड द यूएस, बट समहाउ दैट हैज नॉट टेकन ऑफ एज येट। वी हैव फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम ईरान एंड रशिया इन फैक्ट विजिटिंग India under the BRICS umbrella, all looking to ensure geopolitics does not impact oil prices any further. But fundamentally, our markets, as you mentioned earlier, 1,064 companies have declared the results out of 5,000. And today itself, 148 companies have declared the results, all favorable. And so far, we have seen that the revenue year on year is

0: issue in India?
1: So for India, Russian oil and gas has been very important because they have really, on price front as well as availability, because it avoids this entire conflict zone of Gulf, and we get supplies from Russia which are very unhindered. So and Russia is of course a very important business partner for India also. So my guess is that going forward we will see a lot more imports from Russia of energy. Right now there are sanctions and issues about US restricting that trade, but I don't see in future how Russia will not be a major partner for us, and therefore I think we will going forward. Plus I also see unraveling of this OPEC plus grouping, and therefore the prices eventually will come down substantially for us.
0: And how is India managing to ensure that the retail price of fuel is manageable, including petrol and diesel?
1: It's a very difficult question. Of course, the oil marketing companies are making huge losses right now because from the cost of production to what they're selling. But government is so far has been able to take a lot of this pressure itself. But I think if this sustains, then you might see some price increases coming in.
0: And how do you see the austerity measures announced impacting?
1: I think they're really taking effect, and we see a lot of effect on the ground. Government's cutting down its own expenses and reducing consumption. So I think that is really taking effect very well.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading marginally down at 1,62,840 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.4% lower at 2,96,800 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.2% se adhik badhkar 1,62,567 rupees prati 10 gram par tha, aur July anubandh wali chandi 1.2% ghatkar 2,96,688 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Puneet, sone aur chandi ke daam, in par aapki ek tippani.
1: बिल्कुल प्राची, कल जो गुगली मैं कहूंगा ओवरनाइट जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और एकदम हमने बहुत शार्प जंप देखा गोल्ड और चांदी के दामों में. मुझे लगता है कि ये कुछ समय तक बाजार को काफी उथल पुथल करता
2: रहेगा. गले में आ गया.
1: देखिए कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है. जिनके पास ऑलरेडी सोना है, क्योंकि सेविंग्स हमारी बहुत ज्यादा सोने में या चांदी के रूप में है, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ. उनको लगता है दाम बहुत अच्छे बढ़ गए, और जो फ्रेश कंजम्पशन है उसको लेकर काफी चिंताएं भी हैं. पर मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है शॉर्ट टर्म में, और आने वाले समय में इसके अच्छे फायदे होंगे. पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है जो हाउस होल्ड में जो गोल्ड है, आने वाले समय में उसकी मोनेटाइजेशन होने की भी संभावना है. जो लोग मोनेटाइज कर पाएंगे और उसको कुछ उससे फायदा उठा पाएंगे.
2: यानी आप उसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं.
1: सर्कुलेशन और डेफिनेटली काफी हाउस होल्ड में सेविंग्स हैं गोल्ड की शक्ल में, जो सरकार टैप कर सकती है, और हम उससे में फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमें उससे कंजम्पशन में भी फायदा होगा.
2: बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत कार्यक्रम में आने और अर्जुन और मेरे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद प्राची.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices surge. Sensex jumps nearly 800 points. Nifty settles at 23,690. India's wholesale inflation soars to 8.3% in April this year. And US and China agree on keeping the Strait of Hormuz open for the free flow of energy. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करें।

0: करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवी हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meeting took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
4: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे, हमले उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात।

0: होता है।
1: जी
0: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है। तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी की कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी चीन भी एक ब्रिक्स का देश है उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
1: जी
0: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है ब्रिक्स A20 के बारे में एक सम्मेलन होगा
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जो अभी क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है।

0: उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है, और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, इनफैक्ट जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं। तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो,
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे यह है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहां पे अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सांझ ढले में आज आपके साथ है विभान। नमस्कार। शुरुआत करते हैं साल 1949 की फिल्म बरसात के गीत से, जिसमें संगीत दिया शंकर जयकिशन की जोड़ी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और आवाज लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ और अब सुनते हैं साल 1949 की फिल्म अंदाज से शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

सांझ ढले का अगला गीत साल 1951 की क्राइम ड्रामा फिल्म आवारा से, जिसमें लीड रोल में दिखे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस और लीला चिटनिस। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया और गीत लिखे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। तो इसी फिल्म से लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: सांझ ढले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने

0: अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में सात नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16.99 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जोरबाग से मीठापुर तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, एनएसआईसी ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली 2 हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें GPS ट्रैकिंग और CCTV की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। DMRC के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, CCTV और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन, आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
0: शिक्षा मंत्री आशीष

0: सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉ बीआर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधू ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
1: 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाला है। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कम्पैशनेट भी रहिए।
0: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार किसानों से दूध खरीद लागत में करीब 6% वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में खरीद लागत में 4 से 5 रूपये प्रति लीटर की

सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानीबाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात

0: करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवाई हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया।
1: एन इंडियन डो
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी के पलानी स्वामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। इससे पहले एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 25 विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamalu, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
4: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.

स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है मधुरिमा का और साथ है आपके विभा। नमस्कार। मधुरिमा में आज हम आपको गीत सुनवाएंगे विभिन्न रागों पर आधारित, जो स्वर्णिम दौर के साथ साथ आज भी उतने ही लोकप्रिय और पसंद किए जाते हैं जितना कि उस समय किए जाते थे। तो जल्दी से सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, जिसे हमने लिया है साल 1969 की फिल्म तलाश से। राग बरवा पर आधारित इस गीत में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया है और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तान।

और अब बात राग कामोद की। राग कामोद एक बहुत ही मधुर और प्रचलित राग है। इस राग में मल्हार रंग, हमीर रंग और कल्याण रंग की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, साथ ही केदार और छायानट की झलक भी दिखाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि राग कामोद की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है और राग कामोद पर ही आधारित है मधुरिमा का हमारा अगला गीत, जो कि एक गजल है और संगीत प्रेमी की पसंद है। संगीतकार कुलदीप सिंह के धुनों से सजी इस गजल को लफ्जों का जामा पहनाया है जावेद अख्तर साहब ने। आवाज है जगजीत सिंह और चिकरा सिंह की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट

से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।

0: मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभाग के साथ। और अब आज का हमारा आखिरी गीत है राग झिंझोटी पर आधारित साल 1970 की फिल्म पगला कहीं का से। शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलन और प्रेम चोपड़ा। संगीत शंकर जयकिशन का है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, आवाज लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं।
1: जब

और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन पहले सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने आज दूसरी जीत के साथ शानदार

0: प्रदर्शन जारी रखा। सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्च को सिर्फ 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। इससे पहले सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यूटोंग को हराया था। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। दूसरी ओर सात्विक और चिराग ने ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराया। अब वे जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुंह पुत्रा एरवियन स्या और बगास मौलाना पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओपनिंग राउंड में श्रीकांत ने सिंगापुर के लोहकिन यू को हराया था। देविका ने जापान की एन निदाइदा को, जबकि बंसोड़ ने झांग वेन यू के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु बेहतरीन लय में नजर आ रही है। दो सेट में ही, दो गेम में ही लगातार मुकाबले जीत रही है और बीच में जो एक गैप सा हो गया था 1.5 साल का, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, गेम से बाहर भी रही थी, अब वही पुरानी पीवी सिंधु जो दो बार ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो हमें दिखाई नजर आ रही है खेलती हुई।
2: देखिये, अभी टूर्नामेंट, अभी जो बोल रहे कि अभी कॉम्पिटिशन और मजबूत और टफ होने वाले हैं
1: जी।
2: नेक्स्ट राउंड का मैच जो है क्वार्टर फाइनल अकाने यामागुची के साथ, वो काफी टक्कर का मैच रहेगा, क्योंकि हालांकि सिंधु का पुराना फॉर्म जो आपने बोला, दो बार मेडल जीत चुकी है, उनका जो लीड है 15-12 का हेड टू हेड लीड है
1: जी,
2: मगर आंकड़े कुछ माने नहीं रखता, क्योंकि देखिए सिंधु का, जैसे आपने कहा कि कम बैक फ्रॉम इंजरी से वापसी में, ये अकाने यामागुची अगर थर्ड गेम तक पहुंच गया ये मैच बहुत टफ होगा। इसी से आपको एक्चुअल टेस्ट सिंधु को कल ही मिलेगा जब वो जापानीज के साथ खेलेंगे।
1: और सात्विक चिराज की भी बात करें तो अच्छा खेल किया, प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं इस टूर्नामेंट पे ऑलरेडी, और किसी भी टूर्नामेंट में जब ये जोड़ी जाती है तो उनसे उम्मीदें रहती ही हैं कि वो जीत के आएंगे,
2: और ये खास करके इस टूर्नामेंट वो टॉप सीड है
1: जी।
2: और देखिये, वो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलते हम और जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भारतीय की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और देखिए कल क्या होता है, मगर एवरी डे इज ए न्यू डे, और हर एक पेयर जो आता है कभी भी उलट फिर हो सकता है, मगर सात्विक और साची जो हम बोलते हैं साची के ऊपर हमारा काफी उम्मीदें हैं
1: जो टॉप सीड है, और 2019 और 2024 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। चर्चा करते हैं अब बॉक्सिंग पर। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते, और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 15 गर्ल्स वर्ग ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 33 किलोग्राम वर्ग में अक्षिता ने रजत पदक जीता, 43 किलोग्राम में तन्वी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में यश कुमार और मोहम्मद यासर ने अब्दुल्ला स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का, और अंडर 15 अभी युवा खिलाड़ी हैं, आगे चल के उनको और भी मौके मिलेंगे, और ये एक एक्सपोजर जो है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
2: हमेशा देखिए, कोई भी जो हमारे सारे बॉक्सर्स जो हैं, खास करके जूनियर डिवीजन में भारतवर्ष का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है, और रोहतक में जो हमारा बॉक्सिंग सेंटर है साई का, उसमें इनका ट्रेनिंग होता है, ईयर राउंड ट्रेनिंग होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे जो बॉक्सर्स है जो खेलो इंडिया एथलीट भी है, खास करके उनको सपोर्ट मिलता है, और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो साई का तालमेल जो है ये देखने को मिलता है। अब अगर रोहतक सेंटर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, खास करके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारतवर्ष में होगा, और ये 2036 लॉस एंजलिस 2036 ओलंपिक्स अगर इंडिया में अगर हो पाएगा, तो ये हमारी इधर फ्यूचर जेनरेशन ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सब देखिएगा सब लोअर वेट कैटेगरी में है
1: जी।
2: और लोअर वेट कैटेगरी में हमेशा इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर
1: जी। बात कर लेते हैं भारोत्तोलन पर। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू री को मिला, जबकि चीन के जियान चेन ने रजत पदक हासिल किया। अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आज भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का

0: उठाया उन्होंने, और गुजरात को जो मेजबानी मिली है उस तरह का प्रदर्शन करके भी खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
1: खास करके ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है गांधीनगर में। ये वेट लिफ्टिंग के ऊपर तो खास नजर सरकार का भी है, मगर ठीक है ये जो आपने जो अजीत का जो ब्रॉन्ज मेडल बोला है इसका प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है ये एशियन गेम्स में बरकरार रख पाते कि नहीं, क्योंकि खास करके आप देखिए अगर चाइनीज और कोरियन की जिसकी आपने जिक्र किया उनका जो वेट डिफरेंस है वो गोल्ड जीता वो काफी ज्यादा है, तो कम से कम 20 किलो का डिफरेंस है, 20 किलो वेट लिफ्टिंग में बहुत माने रखते हैं। मगर ठीक है आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि अजीत का जो प्रदर्शन है और भारतवर्ष में 71 किलोज में जो इस तरह से ब्रॉन्ज मेडल आया है ये काफी बेहतरीन है।
0: बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। सोएज भारतीय दिग्गज पीआर श्रीजेस की जगह लेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था। खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं सोएज और काफी लंबा करियर रहा है, 15 साल उन्होंने फुटबॉल हॉकी खेला है और 1995 से लेकर 2010 तक, और कोचिंग भी किया उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में किया है, फिर रियो में किया, पेरिस में किया, तो अच्छा प्रदर्शन रहा और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लेकर आ रहे हैं।
1: जरूर आप देखिए हॉकी इंडिया जो भी सिलेक्शन करते हैं जो कोचेज आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन कोचेज, हमने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज देखे हैं, ये जो ये फ्रेडरिक सोएज है
0: जी
1: इनके एक्सपीरियंस का तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। हालांकि श्रीजेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 5 टूर्नामेंट में 5-5 मेडल मिला है, जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मिला है, मगर उसको शायद इमोशनली हम सोचे तो शायद श्रीजेश के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं अरे श्रीजेश क्यों नहीं हुआ, मगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखिएगा तो हमें हमेशा देखिएगा कि जब भी हमारे पास फॉरेन कोचेज आए हैं हमारी जूनियर टीम हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, और ये जो भी डिसीशंस हॉकी इंडिया लेता है साई के साथ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा जाता है, खास करके जो 2036 ओलंपिक्स जो हमने बात की है जैसे बॉक्सिंग में हमने आपको की है हॉकी में भी सेम रूल और लॉजिक अप्लाई कर रहा है।
0: महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया है कि उन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ को बताया कि 31 जुलाई को नामांकन की तारीख खत्म होने से काफी पहले पद्म पुरस्कार 2027 के लिए भी एक नया प्रस्ताव भेजा गया। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और हेलसिंकी 1952 में याद आता है हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था।
1: जी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडलिस्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट दादा साहेब खशाबा जाधव
0: जी
1: ये रहे हैं, और शायद एकमात्र जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। तो ये जो ये हमेशा जब भी गवर्नमेंट का अवार्ड आते रहता है ये चर्चा में रहता है मगर उनको कभी मिला नहीं, तो इस बार कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि सहायक सरकार इस बार सुन ले, क्योंकि कोई डिजर्विंग वो तो पॉस्ट्यूमसली उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2000 साल में, मगर इतना देर तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था।
0: बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं कल हुए बारिश बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: रायपुर में कल टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता ने 48 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 19, वहीं फिन एलन ने 18 रन बनाए। अंगकृष्ण ने रिंकू सिंह के साथ 4थे विकेट के लिए 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रघुवंशी ने ताबड़तोड़ 71, वहीं रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोलकाता ने 4 विकेट पर 192 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हुए महज 20 गेंद गेंद पर 37 रन जुटाए। इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और केवल 58 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु ने 5 गेंद

0: शेष रहते 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट का ये खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है।
1: क्रिकेट इज एब्सोल्युटली समथिंग दैट आई ट्रूली लव एंड आई जस्ट गिव माय हार्ट एंड सोल आउट देयर ऑन द फील्ड व्हेदर आई एम फील्डिंग और बैटिंग बिकॉज़ इट्स गोना फिनिश वन डे एंड आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे दैट आई एम ऑन द फील्ड एंड जस्ट एंजॉय मायसेल्फ एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लुक फॉरवर्ड टू प्रेशर सिचुएशन लुक फॉरवर्ड टू सिनेरियोस वेयर आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ हीट एंड देन आई चैलेंज मायसेल्फ टू से यू नो व्हाट जस्ट गो फॉर इट एंड व्हेन यू क्रॉस द लाइन इट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर सो यू बिल्ड योर कैरेक्टर स्लोली एंड श्योरली व्हेन यू कीप परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर एंड फॉर मी इवन आफ्टर ऑल दीस इयर्स एंड इट्स स्टिल द लव फॉर द गेम आई जस्ट लव हिटिंग द बॉल इन द मिडल ऑफ द बैट एंड दैट जॉय इज स्टिल देयर एंड इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल।
0: इस मैच के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: 14,000 से ज्यादा रन, 9 आईपीएल सेंचुरीज और लगातार 2008 से जो खिलाड़ी खेलता आ रहा है आज तक वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी इनका प्रदर्शन ऐसा ही था, आज ट्रॉफी है, डिफेंडिंग चैंपियन है तब भी वैसा ही प्रदर्शन, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में।
3: सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं, वो इतने शब्द यूज किया कैरेक्टर
2: जी,
3: यहां विराट कोहली का कैरेक्टर का परिचय है। जो इनिंग्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम नहीं बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि विराट कोहली 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाया, 11 चौका मारा, 3 छक्का मारा, हमने ये नहीं बोलता कि वो 8 डबल लिया, कि इनिंग्स को कैसे पेस किया, जो वो बहुत जरूरी है कि किसी को पकड़ के, एक ओपनिंग बैट्समैन को पकड़ के इनिंग्स को लेके जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ चौवा छक्का तो हमको दिखता है, जो सिंगल्स और डबल्स में खेलता है वही खास बड़े प्लेयर के, जैसे कोहली जैसे प्लेयर को, पेडिग्री वाला जो प्लेयर का, इसका नमूना है और यही विराट कोहली दिखाया। खास करके लास्ट 2 मैचेस में आपको याद होगा 0-0 में आउट हुए थे, उसके बाद यही कैरेक्टर का परिचय है।
2: इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमें अब जुड़ता दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन इंडिया के लिए जो श्रीलंका में होना है, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत कर, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया की टीम में। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, अंडर 19 विश्व कप हो, अंडर 17 हो, लगातार आईपीएल में भी डोमिनेट करके खेल रहे हैं वैभव।
3: एकदम राइट सिलेक्शन है और दिस इज द टाइम कि उसको ब्रेक दिया जाए। जितना भी ब्रेक मिलेगा, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, खास करके 2 टीम के साथ जो खेलेंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और स्पिनिंग ट्रैक में अगर ये प्रदर्शन रन बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको देखिएगा इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और क्या जितना बोले आप उतनी ही कमी है, मगर फ्यूचर तो उनका बहुत ही ब्राइट है।
2: तो क्या हम कहें कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो होना है अभी श्रृंखला, उसके लिए वैभव तैयार है टीम में सेलेक्ट होने के लिए?
3: देखिए तैयार तो है, जब तक ना आप उसको एक्सपोज करिएगा वेरियस पिच और वेदर कंडीशंस में, तब तक आपको उसका एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलेगा। मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट एक चीज है, रेड बॉल क्रिकेट है। तो टोटल आप, हमने कुछ क्षण पहले ही हमने विराट कोहली का बात किया है, कैरेक्टर तो वहीं से पता चलेगा।
2: और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरूषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

0: आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि

0: टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape,

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किए हैं, और एक एआई बेस्ड एक मॉडल लाए हैं जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है, और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है, और ये बेस ये मॉडल

0: हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और एक यूटी में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेनकॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेनकॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर

0: 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहां पे AWS डेटा है, ERG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNCA जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व्ड है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुसखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पर कृषि सखी फसल सखी फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या

0: करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
1: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हर न्यूज पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, वो रीजनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
0: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
1: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
0: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: pressed.
1: Dr. Feroz, just coming back to ICAR, the Indian Council of Agricultural Research, who are actually producing these biofortified crops. So how is it that you are ensuring that diet and lifestyle diseases are reduced? What's the role of sugar? Are you looking to reduce its impact? How are you going about doing it at your level?
2: Yeah, basically, as Dr. Priyanka has mentioned, now we have low GI rice. So very recently, now we have developed low GI maize as well. So low GI essentially means it takes more time for digestion in the human gut. So the availability of the sugar to the blood will be slowly done rather than rapidly enhancing the level of sugars. So we have several breeding methods to develop high yielding, low GI rice or low GI maize, or for that matter, low GI other crops as well. So we have definitely some genes which are known for that. And so we'll try to transfer those genes from the donor to our required varieties. And therefore, we will reduce, or rather, I would say, we'll increase the resistant starch part of it so that the GI or the glycemic index is reduced as compared to the higher ones, which is available in current varieties.
1: Well, taking a cue from what the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, food being the medicine with the right approach. It's time for us to thank both our experts, Dr. Priyanka Bansal with ICMR and Dr. Feroz Hussain with IARI, for giving us such an in-depth understanding of the Sehat Mission, where strengthening of public health is through prevention and awareness, launched in this joint initiative by ICMR and ICAR. Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
4: Insights.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
6: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी

और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुआवजे की स्थिति की जानकारी हर 3 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समर्ग दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरूषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों की उपस्थिति और निरंतर प्रतिबद्धता के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए मानवता को प्राथमिकता देने और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में साझा हित अधिक है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का आह्वान किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन संबंध पहले से कहीं बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
3: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: एक बयान में कहा गया है कि बैठक में ईरान संघर्ष और अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक दबाव की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति 3 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि चीन द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान लगातार ताइवान का मुद्दा उठाता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री लावरोव ने पिछले वर्ष दिसंबर में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति के बारे में श्री मोदी को जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए भारत के निरंतर रुख को दोहराया। 16 देशों के बहुराष्ट्रीय दल के साथ इंडियन ओशन शिप सागर में के रूप में तैनात भारतीय नौसेना पोत आईएनएस सुनैना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच पहल के तहत कल कोलंबो पहुंचने वाली है। इस जहाज को 2 अप्रैल को मुंबई से रवाना किया गया था। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के नौसैनिकों के साथ संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किया गया था। इस प्रशिक्षण में जहाज संचालन, नौवहन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और समुद्री अवरोधन अभियान शामिल थे। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैरा बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के कार्यालय ने कहा है कि यमन और हौती आंदोलन 1600 से अधिक कैदियों के आदान प्रदान पर सहमत हो गए हैं। यह यमन संघर्ष से शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी कैदी रिहाई है। हौती 580 कैदियों को रिहा करेगा, इसमें 7 सऊदी और 20 सूडानी नागरिक शामिल हैं। उधर गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजित ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश और समय हो चुका है रात के 10:31:10। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम हर सिंगार का, तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कई खूबसूरत चीजें बिना किसी पूर्व तैयारी के हो जाती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो वही अनजाने रिश्ते, वही अनजाने पल हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही एहसास से भरा आज के प्रोग्राम का पहला गीत।

विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म सनम बेवफा से ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत था महेश किशोर का और बोल थे सावन कुमार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सिलसिला से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत शिवहरी का और बोल जावेद अख्तर के।

दोस्तों, हर रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एहसासों की जरूरत होती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उनकी खामोशी भी बातचीत बन जाती है और उनकी दूरी भी नजदीकी में बदल जाती है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो चुपके चुपके ही सही, पर जिंदगी को खूबसूरत बना देता है।

0: फिल्म परदेश से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, कुमार सानू की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल आनंद बख्शी के। श्रोताओं, अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम हरसिंगार आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए अगला खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म धर्मात्मा से, आवाजें मुकेश और कंचन की, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, जब कोई हमें समझता है, हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है, तो हमारे भीतर छुपी प्रतिभा और अच्छाई और भी निखर जाती है। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को शब्दों से नहीं बल्कि सच्ची भावना और विश्वास से सजाइए, क्योंकि जब दिल से जुड़ाव होता है तो हर दिन एक नई शायरी बन जाता है।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम हर सिंगार यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:10 पे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश। समय हो चुका है रात के 11:11 और 6 सेकंड्स। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्यार जीवन की वो सुंदर भावना है जो हमें संवेदनशील बनाती है, जिम्मेदार बनाती है और दूसरों को खुशी में अपनी खुशी ढूंढना भी सिखाती है। जब दिल में सम्मान और विश्वास हो तो हर रिश्ता जिंदगी को रोशन कर देता है, लेकिन कोई रिश्ता कब प्यार में बदल जाता पता ही नहीं चलता।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, संगीत जतिन ललित का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजार से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल मीर तकी मीर के।

दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी सुन लो लेकिन दिल नहीं भरता। हमारे भारतीय संगीत में न जाने कितनी ही ऐसी सुरीली आवाजें हुई हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है।

फिल्म किनारा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में, संगीत आरडी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आरडी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, जब हमें किसी का वर्षों से इंतजार हो, ऐसे में वो हमराही, वो हमसफर जब हमारे सामने आ जाए तो हमारे पांव अक्सर जमीन पर नहीं पड़ते। हमारा मन झूम उठता है और मन के साथ साथ हमारे पांव भी थिरकने लगते हैं। अगला गाना भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराने वाला है।

फिल्म घर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों, मोहब्बत भरी मुलाकात हमेशा खास होती है, क्योंकि उसमें बनावट नहीं होती, बस मासूमियत होती है। जब आप किसी को पहली बार प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं, तो समझ लीजिए दिल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि कभी कभी तो एक ही नजर में हो जाता है। तो अगर आपको भी याद है वो पहली मोहब्बत भरी मुलाकात, वो पहली मोहब्बत भरी मुस्कान, तो ये गीत आज आपके लिए है।

0: फिल्म साजन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। श्रोताओं, अगला खूबसूरत गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म हस्ते जख्म से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत मदन मोहन का और बोल कैफी आजमी के।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। पूरे खाली घर में नितांत बैठी मैं और बाहर से आती ये बारिश की बूंदों की टिप टिप की ध्वनि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, जैसे किसी ने कोई मधुर संगीत छेड़ दिया हो और मैं मंत्रमुग्ध होकर इसकी ओर खींची चली जा रही हूं। घर में जब पेड़ पौधों को देखती हूं सभी खुशी से झूम उठते हैं और वर्षा के स्पर्श मात्र से मुझे भी ये बारिश उतना ही सुकून देती है, मेरे तपते मन को थोड़ी सी शीतलता और आंखों से बहते आंसुओं को छुपाना सहज हो जाता है और मैं घंटों बिता देती हूं बारिश में भीगते हुए। ये मेरा सबसे पसंदीदा मौसम जो ठहरा। अगला गीत फिल्म का नाम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए

भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत, आवाज है लता मंगेशकर की।

कितनी खूबसूरत बात है कि पुराने पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हवाएं तेज हैं, बल्कि इसलिए कि पुराने के जाने का समय आ गया है। अब नई कोपलों का आगमन हो चुका है। छोटे पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इस तरह वीरान हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। यहां भी पतझड़ आता है जो खाली कर जाता है किसी अपने की जगह, लेकिन वो छोटी कोपलें जल्दी ही भर देती हैं उस जगह को अपने रंग बिरंगी छटा से। वीरान कुछ नहीं रहता, बस दुनिया में आना जाना जारी रहता है और यही नियम प्रकृति का सबसे खूबसूरत नियम है। अगला गीत फिल्म का नाम है राजपूत, आवाज किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत फिल्म का नाम है बावर्ची और आवाज है मन्ना डे की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केन्द्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत, फिल्म का नाम है गीत और आवाज है मोहम्मद रफी की।

अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से, अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। मन की खिड़की थी आंखें, जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया, और मन खाली हो गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कुमार शानू की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की।

यही सोचकर चुरा लिया था, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने। मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, उसको तो बिछड़ ही जाना था। रखती हूँ कैद में छुपा हवाओं से उसकी खुशबू को, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था। अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे सनम और आवाज है मोहम्मद रफी की।

यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। खुद ही पूछ लेना हाल मेरा कि तुमसे छुपाती बहुत हूं। जानते हो ना, भीतर बहुत से समुद्र छुपाए, मैं मुस्कुराती बहुत हूं। मैं मुस्कुराती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रखना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

अरे वक्त आ चला है कि एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म का नाम है कामचोर।

वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, होठ चुप थे आंख में बस एक संसार रह गया, आंख में बस एक संसार रह गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं, जयती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गीत, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। चांद ढलता ही रहा, सूना सा आंगनदार रह गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। घड़ी चलती ही रही पर दिल हिलाचार रह गया। घड़ी चलती रही पर दिल हिलाचार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बाबू, आवाज है लता मंगेशकर की।

के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद सुरभि होंगी आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और

0: रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' Meeting, which is being held in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and Peace

प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ रिश्ते शोर से नहीं, आवाजों से नहीं, बल्कि एहसास की एक प्यारी डोर से बंध जाते हैं। और जब ये दिल जुड़ जाते हैं तो हर धड़कन एक कहानी कहने लगती है। तो चलिए, इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा। फिल्म है धरती कहे पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है हमराही और सुरभि है आपके साथ। दोस्तों, ठंडी हवाओं का अपना एक अलग ही जादू होता है, एक अलग ही मिठास होती है। लेकिन कई बार जब करीबी व्यक्ति, वो इंसान जिससे दिल लग गया हो, वो दूर रहे और कुछ पुरानी यादें दिल में कसक बनकर उभर आए, तब कुछ मीठे एहसास, या ये कहा जाए कि दिल का दर्द उभर कर दिल के करीब आ जाता है। तो चलिए, सुहाने से मौसम में सुनते हैं हम और आप मिलकर ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हमरा ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूँ, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, नजर नवाज नजारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको। और दोस्तों, रात की महफिल में कभी कभी जहां मोहब्बत की, इश्क की, दर्द की बात हो रही होती है, ऐसे में लोक रंग और शरारत का तड़का लगना भी जरूरी होता है। तो चलिए सुनते हैं मधुमति फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज से सजा चुलबुला गीत आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, कुछ गीत सिर्फ धुन नहीं होते बल्कि वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी अपने की याद जब उठती है या फिर कभी किसी बिछड़ते रिश्तों में कसक हो आती है और कभी दिल की वो खामोशी जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। तो आज की इस रात एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसकी मिठास और दर्द सीधे दिल को छू जाते हैं, रफी साहब की दिलकश आवाज में। चलिए सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

प्यार में कभी रूठना होता है तो कभी मनाना होता है, और बस किसी अपने का साथ इस सफर को बहुत खूबसूरत बना देता है। पुराने दौर के गीतों में यही सादगी और अपनापन तो दिल को छू जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है चोरी चोरी, फिल्म का सदाबहार।

कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि रात की खामोशी में दिल के और करीब आ जाती हैं। किसी की आवाज, किसी की मुस्कुराहट और कुछ अधूरे पल दिल को चुपचाप छू जाते हैं। इसी मीठी कसक और यादों के एहसास के साथ चलिए चलते चलते सुनते हैं पारसमणि फिल्म का ये गीत।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और

ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 लोगों से अधिक की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। और खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आजाद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अपलम चपलम। दोस्तों, कभी कभी किसी की मुस्कुराहट दिल की सारी उदासी दूर कर देती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो माहौल में एक अजीब सी, एक खूबसूरत सी, मीठी सी रोशनी घुल जाती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पारसमणि, लता मंगेशकर और कमलेश की आवाज़।

पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग है, थोड़ी शरारत, थोड़ी मासूमियत और ढेर सारे खूबसूरत एहसास साथ में। दोस्तों, जब मुस्कुराने और जिंदगी जीने को लेकर एक अंदाज की बात की जाए तो ये गीत मस्ती भर देते हैं, आत्मविश्वास और दिलकश अदाओं से सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ऐसे में जब बात हो एक ऐसे गीत की जिसमें रफी साहब की आवाज हो और साथ में महमूद साहब की मस्ती जुड़ जाए तो ये महफिल अपने आप रंगीन हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं गुमनाम फिल्म का ये बहुत ही शानदार गीत रफी साहब और महमूद की आवाज में।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

ताली तग धीम तग ताली तग धीम तग झाला आंबू तग धग तग ताली गेन तग नाक तग झुम तग नाक नाक झुम तग नाक नाक झुम तग नाक नाक झम तरीता झग तरीता झन झाले कोकु तारी दाखू तारी गेटे ताली झम तरीता झग तरीता झन झाले कोकु तारी दाखू तारी गेटे झम तारी झग तारी झग नाक नाक ताक झिन ताक झिन ताक झिन ताक झम तारी झग तारी झाले झाले कोकु

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। कभी कभी चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि उन अपनों से मिलती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब दर्द दिल से निकलकर लफ्जों में बयां होता है तो वो सीधे एहसास तक पहुंच जाता है और इसी दर्द को, इसी सच्चाई को बयां करता है आखिर क्यों फिल्म का ये बेहद भावुक गीत। जी हाँ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। चलिए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

0: अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। भाई पुराने गीतों की मिठास सुरों में नहीं बल्कि लफ्जों में, गीत में और दिल छू लेने वाले अंदाज में बसती है। साथ ही जब रफी साहब की आवाज हो तो कोई भी गीत हो वो एक रंग में ढल कर अपने दिल तक पहुंच ही जाता है। तो चलिए गंगा जमुना फिल्म से सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये चुलबुला गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था

0: एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में कल रात पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of engagement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRIC countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the global south. Earlier, in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: A high-level meeting was held at the residence of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan to review preparations for the upcoming National Eligibility Entrance Test NEET examination. During the meeting, detailed discussions were held on various aspects of conducting the NEET examination smoothly and efficiently. The meeting was attended by

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं सुरभि और प्रोग्राम है भोर सुहानी। दोस्तों, नई सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती बल्कि एक नया भरोसा, नई उम्मीद और फिर से शुरुआत करने का मौका भी लेकर आती है। कल क्या हुआ ये सोचकर आज का दिन मत खोइए, क्योंकि जिंदगी हमें हर सुबह यही कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाइए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती हैं। जो आप सुन रहे हैं भोर सुहानी सुरभि के साथ, जहां हम हर सुबह करते हैं एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद की बात। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज की पहली किरण, और जब ऐसे खूबसूरत पल साथ हो तो ये दिन अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं येसुदास की आवाज में, अयास फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है जहां कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ याद बनकर साथ चल पड़ते हैं, और ऐसे में कई बार वो हमारे साथी भी बन जाते हैं और कई बार दर्द भी दे जाते हैं, और ऐसे समय में गीत हमारे साथी होते हैं जो हमारे सफर को खूबसूरत भी बनाते हैं और तसल्ली भी देते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।